नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल

0: जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: FM 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक इस वेले सवेर के 6:30 हो रहे ने ते आओ हुण तुहानूं सुनांदे आं प्रोग्राम खेतीबाड़ी।
1: खेतीबाड़ी

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

हुने तुसी सरवन कीता मानस कांदा 126वां भाग मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटी

आओ हुन तुहानू जानकारी दी दिए अद अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स दी सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर सवेरे 8:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम महक पंजाब दी सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार पंडित हरविंदर कुमार शर्मा पासू सितार वादन राग मियां की मल्हार सुनोगे 9:30 तुसी सुनोगे गजलां सवेरे 10:02 ते पेश किया जाएगा प्रोग्राम हलो फरमाइश तुहाडे मनपसंदीदा इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो उहदे लिए तुसी नंबर डायल करना है 081-2342-173 उस तो बाद 11:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम टमक जलंधर पैंदी 12:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वसदे वेड़े दा इस प्रोग्राम च अज तुसी मेहमान ब्रूहा तो मनमोहन सिंह ते दिलजीत कौर होरा पासों की गलबात सुनोगे ते दोपहर 1:15 फौजी वीरां लई प्रोग्राम पेश किया जाएगा बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम रंगली धरती इस प्रोग्राम च अज तुसी बलदेव सिंह सिखरे होरा दे गीत सुनोगे साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सदा बहार गीत शाम 4:30 असी तुहानू ले चलांगे गुरु नगरी अमृतसर जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे उस तो बाद शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30 इस चज तिला दी काश्त बारे जानकारी दिती जावेगी ते जानकारी देंगे डॉक्टर अमित कौल शाम 7:40 ते तुसी सुनोगे हिंदी टॉक ते काव्य पाठ च तुसी जसप्रीत कौर फलक हुरा पासो कविता सुनोगे रात 8:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम जिंदगी हसीने रात 9:00 तुसी सुनोगे न्यूज एट 9 रात 9:15 स्पॉटलाइट पेश किया जाएगा ए दोनों प्रोग्राम साड़ी दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे रात 9:30 तुसी सुनोगे पंजाबी नाटक फर्श विच रुख सुनोगे ते रात 10:02 ते तुसी सुनोगे जी कवि खोश्टी रात 10:30 तुसी सुनोगे गजलां

0: डेवी वोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 7 वज रहे ने ते हुन पेश ने अज दियां मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दे 6 दिना दौरे ते होणगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोहा विच कतर दे प्रधानमंत्री अते विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रमन बिन जस्मीन अल थानी नाल मुलाकात की। दोवां नेतावां ने दुवल्ले सहयोग दे वख-वख पहलुआं दी समीक्षा की। पेट्रोलियम बरामदकार देशों दे संगठन ओपैक प्लस ने इस साल अगस्त तो तेल उत्पादन विच 188,000 बैरल प्रति दिन वाधा करन लई सहमति प्रगटाई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच सहकारिता मंत्रालय दी 5वीं स्थापना दिवस समारोह विच शामिल होंगे। भारत आज असाम दे गुवाहाटी विच शुरू होने वाली 2 रोजा ब्रिक्स नशा विरोधी एजेंसियां दे मुखिया दी मीटिंग दी मेजबानी करनगे। अमली लोक शिकायतां अते पेंशना बारे राज मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने भारतीय मजदूर संघ BMS अते संबंधित मुलाजमां जथेबंदियां दे एक वफद नाल सरकारी मुलाजमां पेंशनकारां अते प्रशासनिक सुधारां नाल जुड़े कई मुद्दियां ते चर्चा करन लई मुलाकात कीती। पंजाब दे पट्टीदर्ज जाता नाल संबंधित विद्यार्थियों लई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम साल 2026-27 दा पोर्टल अधिकारक तौर ते खोल दिता गया है। साबका केंद्रीय मंत्री अते भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर आगू विजय सांपला ने इल्जाम लाया है कि सूबा सरकार वालों उन्हां नूं कानूनी प्रक्रिया दे उल्ट कदमां राहीं परेशान किया जा रहा है। अते चंडीगढ़ सहित मौसम विभाग ने अज तो 9 जुलाई तक पंजाब हरियाणा दे ज़्यादातर हिस्सों दे नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह दा येलो अलर्ट जारी कीता है। ऐ सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर बस कुछ ही पलां च।

नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, सोहनी सवेर दे हुने सोहणे जे वेले हो चुके जी टाइम प्रोग्राम सोहनी सवेर दा। ते सोहणे जे सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रहांगी जी तुहाडे नाल। ते प्रोग्राम सोहनी सवेर आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, एक होर नवी सवेर साडे दर ते दस्तक दे चुकी है। रब दा शुकर है कि उसने सानू एक होर नवा दिन दिता है, अपने नाल हसन दा, अपनी मेहनत नाल सुपनियां नू साकार करन दा, अते किसे दी जिंदगी विच छोटी जी खुशी बनन दा। दोस्तों, हर दिन एको जिहा नहीं हुंदा, पर हर दिन एक नवा मौका जरूर हुंदा है। इसलिए अज जदों घरों निकलो, अपने नाल एक मुस्कान भी लेके निकलना है, दिल विच मेहनत करन दा जज्बा भी रखना है, अते ਇਹ ਨੀਅਤ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ

बिल्कुल जी, सुबह सुहानी है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है सोनी सवेर ते नाल हो रही ने सोनिया सोनिया गल्ला ते तुसी इंजॉय कर रहे सी गीत के जे येसुदास की आवाज़ बहुत सोहना जो गीत सी। ते दोस्तों हुन वेला हो चुके है जी प्रोग्राम च अज दे पॉजिटिव विचार। दोस्तों असी अक्सर सोचते हाँ कि अपने मन की गल जी है वह किस नाल सांझी करिए। कई बार बहुत सारिया मन च अजिया

प्रोग्राम सोनी सवेर आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों जिवें कि असी हर रोज़ किसी ना किसी खास दिन की गल करते हैं प्रोग्राम सोनी सवेर च, उस तरह अज की जेकर असी गल करिए 6 जुलाई नू दोस्तों दुनिया भर च वर्ल्ड जूनोसिस डे जड़ा है वह मनाया जाता है। सब तो पहला जानते हैं कि जूनोसिस हुंदा की है। जूनोसिस दोस्तों वो बीमारियां हुंदियां ने जो जानवरों तो इंसानों विच ते इंसानों तो जड़ा जानवर ने उन्हां च फैल सकदियां ने, जिवें कि रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर कोई होर जड़े वायरल इन्फेक्शन ने उन्हां बारे। तो दोस्तों यह दिन इसलिए मनाया जाता है, पिछे मोटिव जड़ा है कि जड़े लोग ने उन्हां नूं इन्हां बीमारियां प्रति जड़ा वो अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, तो यह समझाया जा सके कि जेकर थोड़ी जी सावधानी नाल असी अपनी अते अपने परिवार की सेहत की किवें रख्या करनी है, जेकर असी इन्हां प्रति अवेयर होवांगे तो ही जो है असी सावधान होवांगे, जे अलर्ट होवांगे तो ही बचाव हो सकेगा। तो कुछ सौखिया गल्लां ने जो तुसीं हमेशा याद रखनिया ने। इस दिन का जिहड़ा मेन मोटिव है वो यही है कि लोगों नूं अवेयर किया जा सके। सब तो पहला जेकर तुहाडे घर पालतू जानवर है, अपने पालतू जानवर का समय समय से दोस्तों टीकाकरण जिहड़ा है वो जरूर करवाओ। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बीमार जानवर नाल बिना जिहड़ा लोड़ है ना वो संपर्क ना करो। जानवरों नूं छूण तो बाद हाथ जिहड़े ने वो जरूर साबण नाल चंगी तरह धोने है। जे किसी जानवर की कट्टन या फिर खरोच लगन की घटना हुई है तो तुरंत जिहड़ा वो डॉक्टर नाल संपर्क करो। दोस्तों अज के समय च वन हैल्थ जिहड़ी है ना उसकी सोच नूं बहुत इंपॉर्टेंस जिहड़ी वो दित्ती जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण मनी जाती है। इसका मतलब है कि इंसानां जानवरां अते वातावरण वातावरण की सेहत आपस में जिहड़ी है ना वो जुड़ी हुई है, कनैक्ट ने सारे। जेकर असी कुदरत अते जानवरों का ध्यान रखांगे तो अपनी सेहत भी जिहड़ी है ना वो होर ज़्यादा सुरक्षित रह सकेगी। सो दोस्तों जागरूक रहो, सावधान रहो अते सेहतमंद रहो, क्योंकि बचाव ही जिहड़ा है ना वो सब तो वधिया कहिंदे ने इलाज हुंदा है। तो प्रोग्राम सोनी सवेर च अगला गीत कैलाश खेर की आवाज़ तो तुसी सुनो। तो गल्लां बातां दा जिहड़ा सिलसिला है प्रोग्राम सोनी सवेर च जानकारियां दा सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल तुसी सुनो।

कैलाश खेर दी आवाज़ च तुसे सुन रहे सी जी दिल नू छू लैन वाला एक गीत ते प्रोग्राम सोनी सवेर च हुण वध रहा जी अगे। ते दोस्तों जिवें कि असी पहला भी गल कीती कि जिहड़ा बेशक कैलेंडर दे विच जिहड़ा दिन है जिहड़ी तारीख है वह बदलती है, लेकिन नाल दे नाल अपने नाल कोई ना कोई इतिहास जिहड़ा वह जुड़िया हुंदा है हर तरीक दे नाल। ते दोस्तों अज दा दिन जिहड़ा है वह एक होर महान जिहड़ी शख्सियत नूं याद जिहड़ा वह दिवांदा है। अज है जी बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि, जी हाँ डैथ एनिवर्सरी है जी अज बाबू जगजीवन राम जी की। बाबू जगजीवन राम जी बारे तुहानूं जेकर असी दसीए उन्होंने जीवन ते जेकर असी झात मारीए ते वह भारत दे प्रसिद्ध आज़ादी सैनानी सन, समाज सुधारक ते देश दे काबल राजनेता सन। उन्होंने दोस्तों अपना सारा जीवन दस्या जांदा है कि समाज विच बराबरी, समाजिक नियां ते पिछड़े वर्गों के हकों लिए जिहड़ा ना अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिता। दोस्तों आज़ादी तो बाद भी कहिंदे ने कि उन्होंने कई ऐसे इंपोर्टेंट मंत्रालयों की जिहड़ी जिम्मेदारी है वह निभाई सी, खास करके खेतीबाड़ी ते रक्षा मंत्री वजों उन्हों का जिहड़ा योगदान सी वह बहुत ज़्यादा दस्या जाता है कि इंपोर्टेंट मनिया जाता सी। ते वो सादगी यानी कि सिंपलिसिटी ते ऑनेस्टी इमानदारी ते लोक सेवा लई हमेशा जिहड़ा है दस्या जाता है कि वह याद किए जाते हैं। उन्हों का जीवन सानू दोस्तों यह सिखाता है कि मेहनत सिक्ख्या दृढ़ इरादे जिहड़े ने जेकर वह होण ते उन्हां नाल हर रुकावट नू पार किया जा सकता है अते समाज विच एक पॉजिटिविटी लियाई जा सकती, एक सकारात्मक बदलाव लियाया जा सकता है। तो आओ उन्हां दी पुण्यतिथि ते असी इस महान शख्सियत नू निमर श्रद्धांजलि भेंट करने हैं। तो उन्होंने जिहड़े जीवन तो सानू प्रेरणा मिलती है जां जो उन्होंने अपनी लाइफ दे विच कीता है, जिहड़ी आने वाली जनरेशन है, जिहड़ी आने वाली पीढ़ी है, उन्होंने भी उस तो सिक्ख्या लेनी चाहिए है, उन्होंने आदर्शों तो प्रेरणा सानू लेनी चाहिए है। प्रोग्राम सोनी सवेर च अगला गीत मुकेश ते साथियां दी आवाज़ च तुसीं सुनो।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@

0: prasarbharati.gov.in.
1: प्रोग्राम चल रहे जी सोहनी सवेर, ते प्रोग्राम सोहनी सवेर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों आज का दिन होर महान एक होर महान शख्सियत की याद नाल जिहड़ा है वह जुड़िया होया। अज यानी कि 6 जुलाई जिहड़े है वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे जेकर असी दोस्तों गल करिए ते उन्हां दा जन्म जिहड़ा है वह 6 जुलाई 1901 नूं कोलकाता विच होया सी। वो एक प्रसिद्ध सिख्याविद वकील चिंतक ते राजनेता सन। बहुत छोटी उम्र च दोस्तों दस्या जांदा है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र च ही वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दे सब तो नौजवान वाइस चांसलर बने, जो कि अपने आप विच ही एक बहुत वड्डी उस टाइम ते बहुत वड्डी उपलब्धि सी। आज़ादी तो बाद वो भारत के पहले उद्योग ते सप्लाई मंत्री भी रहे। बाद विच दस्या जांदा है कि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसनों अज दी जिहड़ा अज भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा वो पूर्व रूप मनिया जांदा है। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता सिक्ख्या ते राष्ट्रीय हितां लई बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों योगदान दिता। उन्हां दे विचार ते कम जिहड़े ने वो अज भी याद किए जाते हैं। तो अज उन्हां दी जन्म जयंती ते असी उन्हां नूं सत्कार नाल याद करदे हां ते उन्हां दे देश सेवा दे जज्बे नूं असी नमन करते हैं। दोस्तों जिहड़ा भी दिन जदों इस तरह दे वड्डियां शख्सियतां जिन्हां ने देश दे लई कुछ कीता है सानू उन्हां तो सीखने की लोड़ है, क्योंकि जिहड़ियां आने वाली जनरेशन ने, क्योंकि कहते हैं कि हर कोई जिहड़ा वह अपने लिए तो जी लैंदा है, लेकिन जदों असी दूजियां लई जीने आ ते असल जिहड़ी इंसानियत है, असल जिहड़ा इस दुनिया च आन दा जिहड़ा मकसद है वह पूरा हो जाता है। तो अजिहियां जिहड़ियां शख्सियतां ने जिवें कि अज 6 जुलाई असी गल कर रहे सी कि चाहे वह बाबू जगजीवन राम जी होन या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होन, अजिहियां जिहड़ियां शख्सियतां ने इहनां दे जीवन तो सानूं सीखना चाहिए है। तो जो इहनां दे विच जज्बा सी उस जज्बे नूं ही उस जज्बे तो प्रेरित होकर अपने जीवन च अगे वधना चाहिए है। लो जी सुखविंदर सिंह श्रेया घोषाल की आवाज़ च अगला गीत इंजॉय करो।

संजू मूवी का गीत तुसी इंजॉय कर रहे सी, सुखविंदर सिंह ते श्रेया घोषाल दी आवाज़, बहुत सोहना जिहा गीत जिहदे कि सानू मोटिवेट कीता है। ते मोटिवेट होना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है जिंदगी च, जेकर निराशा जदों जदों सानू घेरे उदों मोटिवेट जिहड़ा है उह प्रेरणा असी किसी के जीवन तो लैनी है, इंस्पिरेशन लैनी है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो दोस्तों प्रोग्राम सोहनी सवेर च जानकारियां जिहड़ियां है, जानकारियां का सिलसिला है उन्हों अगे वधाने आ। तो जिवें कि तुसी जानते हो 1 जुलाई तो लेके 7 जुलाई तक पूरे देश च वन महाउत्सव हफ्ता जिहड़ा ना दोस्तों वह मनाया जा रहा है। अज इस हफ्ते का 6वां दिन है जी, तो यह सानू कुदरत नाल अपने रिश्ते नू होर मजबूत करन दी याद दवांदा है। दोस्तों एक रुख सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं दिंदा, सगों गर्मी नू घटाण, मीह दे पानी नू संभालन, ते मिट्टी दे कटाव नू रोकन, ते पंछियां ते होर जिहड़े जीव ने इस कुदरत ते कुदरत च उहनां नू आसरा देण विच वी बहुत वड्डी भूमिका जिहड़ी है ना उह निभांदा है। अज जदों असीं वधदे प्रदूषण ते बदलदे मौसम दी गल करदे हां, बहुत सारियां साडे मनां च शिकायतां रहिंदियां ने कि गर्मी बहुत वध रही है, पर दोस्तों उहदे पिछे जिहड़ा रीज़न है ना उह असीं मनुख ही हाँ। ग्लोबल वार्मिंग जेकर हो रही है तो उहदे पिछे भी असीं मनुख ही हाँ। तो जदों असीं वधदे प्रदूषण बदलदे मौसम दी गल करदे हां तां हल जिहड़ा ना उह कुदरत कोल ही है। दोस्तों एक छोटा जिहा पौधा जो अज असीं लगाने हां ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट

0: बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता

0: और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसला

0: मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न

0: अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स थी ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म टौर बन जाओगी जो हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दा गाया गीत। बहुत सोहना जिहा गीत है जी, करो इंजॉय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित

वाह जी वाह, बहुत सोहनी गज़ल तुसी सुनी जगजीत सिंह जी दी। सदाबहार गज़ल हर अल्फाज विच प्यार दी नरमी ते एहसासां दी डूंघाई महसूस हुई है इस गज़ल चों। दोस्तों, जिंदगी दा हर सफ़र आसान नहीं हुंदा, कदे राहां विच मुश्किलां आउंदियां ने, कदे इम्तिहान, पर यही सफ़र सानू होर मजबूत भी बनांदा है। गज़लां भी अक्सर इन्हां ही जज्बातों नू बड़ी खूबसूरती नाल बयान कर जांदियां ने। हुण इसे एहसास नू अपनी बेमिसाल आवाज़ विच पेश कर रहे ने गुलाम अली साहब। दिसो नू ए दिल नू छू लेने वाली गज़ल।

हरा के आईसीसी महिला 2020 विश्व कप जीत लिया है। ऐसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 854 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 10:02 हो रहे ने ते हुन पेश करन जा रहे हैं जी फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश। तुहाडा मनपसंदीदा प्रोग्राम हैलो फरमाइश च तुहाडे मनपसंदीदा गीत असी जिहड़े आ ओह प्ले करदे आ ते प्रोग्राम च तुहानू शिरकत करनी पवेगी। जेकर तुसी अपने मनपसंदीदा गीत सुनने आ ओह किवें करनी है उहदे लई तुसी नंबर डायल करना है जी। नंबर है 0181 43 173। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते सुनो अपने मनपसंदीदा गीत। फिलहाल इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं जी अरिजीत सिंह ते नीति मोहन की आवाज़ च फिल्म कलंक चो। सन 2019 च फिल्म आई। लो जी, इंजॉय करो ये गीत।

0: बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं सारे फर्स्ट क्लास होंगे। तो प्रोग्राम हलो फरमाइश अपनी कॉल जी ट्राई कर रहे होंगे। फिलहाल आओ जानते हैं सब तो पहली कॉल किना दी आई है, किड़े कॉलर दोस्त ने सानू ज्वाइन किया। हेलो,
1: मैम,
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: विकास सिंह गिल जी, पिंड भंगाला जी, जिला फाजिलका, तहसील अबोर तो बोलता मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: हाँ जी, किवें दा मौसम है जी उत्थे तुहाडे?
1: मौसम अज बदलवाई जी है मैम, हवा तेज है जी,
0: मीह पिया?
1: हवा हवा चली आंदी है जी, बदलवाई जी है। हाँ
0: अच्छा जी, चलो
1: जी
0: सोना हो जाएगा मौसम, गर्मी तो राहत मिलेगी। अगे हले अलर्ट है आने वाले दिनों तक।
1: हाँ जी, ऐसी तो ना जी, मीह 2-3 दिन झड़ी लग जाए ना जी, साढ़े तो फिर जाके साडा इधर काल निकलता जी, इन्नी गर्मी है जी, तो बुरा हाल है इधर तो सानू।
0: हाँ जी, हाँ जी, चलो फिर अज तुहाडी कॉल लगी, किन्ने दिनों बाद कॉल लगी तुहाडी?
1: हो गए ने 10 दिन,
0: चलो 10 दिनों
1: फिल्म
0: बाद कॉल लगी, फिर केड़ा गीत सुनना तुसी?
1: है जी, आज का अर्जन जी, गीत है जी, गोरी है कुलैया जी।
0: ठीक है जी, जरूर कर दें तुहाडी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए,
1: मैम
0: सत श्री अकाल जी। लो जी, आज का अर्जुन इस फिल्म चो है लता मंगेशकर ते शाबीर दी आवाज़ गीत सुनना चाहते ने, जरूर कर दें इन्हां दी फरमाइश पूरी। तो तुहाडी भी फरमाइश असी पूरी करनी है जी, 1 घंटा इस प्रोग्राम च असी तुहाडियां कॉल्स लेनियां ने, ते तुहाडे मन पसंदीदा जिहड़े गीत ने ओह प्ले करने ने। तुसी बस काम करना है की है, 0181-2342-173 ए नंबर डायल करना है, प्रोग्राम च शिरकत करनी है और अपनी मन पसंदीदा गीत सानू दसने, ते असी फरमाइशां तुहाडियां पूरियां करनी है। प्रोग्राम हालो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है।

0: मैडम
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे जी?
0: जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
1: चंडीगढ़ तो कॉल मिलाई है। किवें दा मौसम है जी उत्थे?
0: मैडम जी मौसम बदलवाई है जी, हवा चल रही ठंडी।
1: ठंडी हवा चल रही है, चलो बहुत वधिया है। किन्ने दिना बाद कॉल लगी तुहाडी जी?
0: मैडम जी हो गए जी 10 दिन बाद लगी, काफी दिन बाद लगी है तो।
1: काफ़ी दिनों बाद लगी है। चलो फिर आज केड़ी फरमाइश है तुहाडी, केड़ा गीत सुनना है तुसी?
0: नास्तिक फिल्म दा जी,
1: नास्तिक फिल्म चो केड़ा गीत है?
0: प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बेजार।
1: ठीक है जी, ज़रूर पूरी कर दें तुहाडी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए, धन्यवाद जी। नास्तिक फिल्म सन 1982 च फिल्म आई सी, ते इन्हां दी जिहड़ी फरमाइश है उस गीत नूं गाया है अमित कुमार ने। लो जी, इंजॉय करो ये गीत।

0: फिल्म में अज्ञानता कानून था कुछ वर्दी वाई रोते रोते हंसना सीखो।
1: ठीक है जी, ज़रूर पूरी कर दें तुम्हारी फरमाइश।
0: शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया जी। लो जी, अंधा कानून फिल्म चू किशोर कुमार दी आवाज़ च गीत इन्हों की फरमाइश असं जरूर पूरी करांगे और तुहाड़ी भी फरमाइश पूरी करांगे। हजे भी इस प्रोग्राम च समा बाकी है, तुसी 0181 23 41 173 ए नंबर डायल करो, नाल दे नाल सोने सोने गीत भी सुनो, प्रोग्राम च शिरकत भी करो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुन के तुसी अपना दिन सोहना बनाओ। फिलहाल किशोर कुमार दा गाया गीत इंजॉय करो।

0: वाह जी वाह, बहुत सोहना जा गीत किशोर कुमार दी आवाज़ च इंजॉय कर रहे सी। आओ जानते हैं हुण प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हैलो,
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम जी, मैं पॉल बोलदा सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा।
1: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा भी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनना है तुसी जी?
1: गीत मैडम सुना दो, फिल्म दा नाम शोर, गीत दे बोल है पानी दे पानी तेरा रंग कैसा।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दे तुहाडी।
1: बरसात दा मौसम है ते पानी इकट्ठा भी कितने हो जाता है,
0: हाँ जी,
1: ते उस तो बचाव लई पानी नू सानू उन्ना जी इस्तेमाल करना चाहिए जिन्ना सानू जरूरत होवे।
0: बिल्कुल जी,
1: हाँ जी,
0: बहुत सोहना संदेश।
1: एक अद्धा पेड़ भी जरूर लाना चाहिए क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया, हुण पेड़ ला के तो पानी लाने की लोड़ नहीं पैंदी।
0: बिल्कुल जी,
1: पेड़ जरूर लाना चाहिए कोई ना कोई, एक अद्धा जरूर।
0: बिल्कुल जी। वन महोत्सव हफ्ता भी 1 जुलाई तो लैके 7 जुलाई के दरमियान मनाया जा रहा है, तो तुसी संदेश देता है, तो
1: हाँ जी, हाँ
0: उम्मीद
1: जी,
0: करते हैं साढ़े सारे लिसनर्स है गल नू जरूर जड़ा है वो मनणगे, अमल
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: करनगे।
1: सानू सारयां नू बहुत उपराला करना चाहिए क्योंकि गर्मी जिदा बहुत ज्यादा होंगी है,
0: हाँ जी
1: बरसात घट होंगी है।
0: बिल्कुल जी,
1: हाँ जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई,
1: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा भी, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी। लो जी, शोर फिल्म चो लता मंगेशकर ते मुकेश ते साथियां दा गाया गीत इन्हां दी फरमाइश है, ते तुहाडी फरमाइश भी असी पूरी करनी है। 0181-2342-173 ए नंबर तुसी डायल करना है, उस तो बाद साडा काम है, असी तुहाडी फरमाइश पूरी करनी है, ते तुहानू सुनाने ने तुहाडे मन पसंदीदा गीत। फिलहाल इंजॉय करो सोहना जिहा गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੂ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह

0: में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 हो रहे ने। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। आओ शुरुआत करदे हां प्रोग्राम दे पहले गीत पंजाबी गीत शाजिया मंजूर दी आवाज़ दे विच।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रोग्राम चल रहा जी, तमक जलंधर पेंदी ते स्रोतियों जल्दी जल्दी नंबर नोट करो जी, 94 65 53 60 77। साढ़े को बहुत सारे मैसेज आज भी रहे ने ते होर भी साढ़े स्रोते जिहड़े आ सानू होर मैसेज करन, ताकि असी तुहाडे पंजाबी फरमाइशी गीत सुनाईए तुहानू ते तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करिए। साढ़े कोल अगली फरमाइश पहुँची है जी, सुखदेव कलेर, नरेश कलेर, संतोष राणी, पूजा राणी, पुनीत निगाह ते पोत्रा सुखदीप कलेर, ते वार्ड नंबर 1 बला चौर तो। ते अगली अगला मैसेज साढ़े कोल, अगला संदेश पहुँचा जी, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, ते ये लिख रहे हैं जी सानू मैसेज जनकपुरी सहारनपुर तो। अगला मैसेज साढ़े कोल पहुँचा है कलानौर तो, नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। अगली फरमाइश पंजाबी गीत की कीती है जी कृष्ण बागला, आशा बागला, साजन बागला, प्रिंस बागला, रजनी, आंचल वंश, ये लिख रहे हैं जी मैसेज पिंड थे कलंदर तो। सावत खेड़ा पिंड नेड़े मंडी डब वाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र, तो इन्होंने कहा जी सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। ते पिंड फ्रांसी जिला हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। अगली फरमाइश साढ़े कोल पहुंची है जी मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनाबाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी ते पूरा अब्बासी परिवार। ते मैसेज लिख रहे हैं जी उपर कोट मोहल्ला चौखुट्टी बुलंदशहर तो। चौकबत्तिया वाला ज़िला फतेहगढ़ साहिब तो मैसेज भेज रहे हैं बलविंदर बिल्ला, माधोपुरी, राजकौर, ज्योति, गोल्डी, बब्बू, टिवाणा, USA, राम लाल खरोड़ा, तो सारा माधोपुरी परिवार। तो कोई भी पंजाबी गीत सुना दो जी। विजय तंवर ते ममता मुंडी खरड़ तो कर रहे हैं जी सानू कोई भी पंजाबी नगमा सुना दो। कोई जी ताडे सारियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनाण जा रहे हैं जी जैजी बी ते सुखशिंदर शिंदा दी आवाज़ च ये गीत।

0: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
1: प्रोग्राम चल रहा जी वट्सअप मैसेज ते आधारित धमक जलंधर पेंदी तुसी भी सानू अपने मैसेजिज होर भेज सकते हो। साडा नंबर नोट कर लो जी, वट्सअप नंबर है 9956560 77 ते साडे कोल होर फरमाइशां पहुंचियां है जी चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान, वीना तुलसी, आशीष चैतन्या, मेघा विजय गोयल बजीतपुर कातियांवाली तो फाजिलका तो पूरा परिवार ते इन्हां दे नाम है जी जगदीश गोयल, अश्विनी अंगूरी, संजू अंजू, संदीप बनवारी। मेन मार्केट रेलवे स्टेशन छींटा वाला तो लिख रहे हैं जी प्यारा सिंह सिद्धू ते मनदीप सिंह सिद्धू, बिल्लू पाली। उत्तराखंड तो सानू मैसेज किया है जी जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मुहम्मद, रिहान समरीन, परवीन माहिरा नूर। ते अगला मैसेज साडे को पहुंचे है जी जिला मुरादाबाद तो पिंड दुलापुर उत्तर प्रदेश तो फरमान सलमान, इरफान इसरार, नरगिस खातून। फिलीपींस मनीला तो सानू मैसेज किया है जी मदन।

लहर, सरबजीत लहर, संजू, नीतिका, अजय, एंजल, अर्णव, अर्णव ते अर्णव लहर, ते इन्हां ने सानू कहा जी जगजीत सिंह दा कोई भी पंजाबी गीत सानू सुना दिओ। पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू, भूरा सिंह गहलोत, राजा वड़िंग, पिंड वजीतपुर तो भोमा वजीत सिंह तो ते भोमा तो बलजीत सिंह। अगली फरमाइश साढ़े को पहुंची है जी मंगत राम, जगदीश, संदीप, मिधा, ममता राणी, अभिषेक, दिव्या। झारखंड तो सानू मैसेज किया है जी एस एम जावेद ते गुमला ने। ते लो जी इन्हां सारियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनाउण जा रहे हां जी जगजीत सिंह दी आवाज़ च ये गीत।

महस गेट नाभा तो सोमदत्त ज्योति कैरव गुरमनत, पहाड़गंज मुल्तानी टाणा तो अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक, विनय मोहन खारवन मीनाक्षी पलोमा ते डॉक्टर ईशानी ते सानू मैसेज कर रहे सैक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो। जसवंत सिंह एकम मनकीरत जंडवाला मीरा सागला फाजिलका तो मैसेज कर रहे ने, इन्हां ने कहा सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। ते अगली फरमाइश साढ़े कोल पहुंची है जी डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मुद्रकर सदानंद कुमार गौरव, जलालाबाद वेस्ट तो मैसेज कर रहे हैं सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी निमित आहूजा, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो मैसेज कर रहे हैं। तो इन्हों ने सानू कहा कि कोई भी पंजाबी गीत सुना दो, तो इन्होंने सारिया की फरमाइश से तुम सुना जा रहा रणजीत पावा की आवाज़ ये गीत।

कौरा, उषा, हैरी, शैरी, शाइना, साक्षी, तक्ष कौरा, ते पूरा इन्हों का कौरा परिवार, पिंड गढ़ी कोटाहा, जिला पंचकूला हरियाणा तो सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम ते अकरम शानिया, इलियास मुशाहिद रौनकी, ते इन्हां सारिया की रली मिली फरमाइश ते तुहानूं सुनाउण जा रहे हां कमल हीर की आवाज़ च ये गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।

0: होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम बस दी विड़ी।

0: नमस्कार।
1: वज़े बड़े प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ जी, मैं प्रिया और मेरे नाल ने
0: जी मैं पूनम भी हाजिर हाँ। सारे सुनने वाले नु नमस्कार, प्रिया जी तुहानू भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार पूनम जी। ते भी अज मौसम तो साडे इत्थे ना शहर जलंधर दे विच बड़े बदल पए सीगे, है ना, पर मीं किते किते ही पिया मैनू लगदा।
0: वैसे जदों आसमान च बदल आउंदे आ ते इक उम्मीद भी बन जांदी है, मन अपने आप ही उड़ीकण लग जांदा है फुहारां नूं किण मिण, ते इह जिहड़ी त्रिश बणदा साडे सामणे ना एक मन दे विच खुशी लैके आउंदा है। ते इह आगमन इस चीज़ दा भी है कि मानसून आ चुका है
1: जी। ते नाले तुसी देखो कि हल्का भी जे मीह पवे ना उस तो बाद जे असी सड़कां ते निकलीए हरियाली दा जिहड़ा रंग है, जिहड़े पत्तियां दा रंग है, पेड़ां दी जिहड़ी तुसी कहो ना कि उन्हां दे भी चेहरे ते एक अलग जिही मुस्कुराहट तुहानू नज़र आंदी है, बहुत ही खिड़े खिड़े लगदे ने सारे।
0: बिल्कुल जी, जो भी प्रदूषण दे नाल उन्हां ते धूड़ मिट्टी पई हुंदी है ना, ते उह जदों उह धोते जांदे ने रुख पत्ते पेड़ पौधे फुल इह सब इस तरह निखर के आउंदे ने जिवें उन्हां नूं हुणे हुणे नहलाया होवे।
1: बिल्कुल। ते मैं ये भी कई बार नोट किया कि भी असी ना घरां दे विच बूटे लाए होंगे ने, चाहे गमलिया च लाए हों, छोटे छोटे क्यारियां च लाए हों, उन्हां नूं जदों असी बाल्टी ते मग ना पानी देने हैं ना, वो इस तरह नहीं खुश सानू नजर आते, खिड़े खिड़े नहीं लगते, पर मीह तो बाद ना इदा लगता कि नचते पे हो जिवें।
0: देखो ये जो कुदरती मिलन है ना बरसात ते पौद्यां दा पानी दा फुहार दा ताजगी दा, ये इस दे नाल दी कोई रीस नहीं है। कुदरती जो कुदरती चक्कर है उसे विच सब कुदरत दा जो संतुलन बनता है तालमेल बनता है
1: जी
0: वो देखा ही बनता है
1: जी। और यही हरियाली जिहड़ी है वो साडे आस पास जिहड़ी है साडे जीवन दा हिस्सा इसे तरह बनी रहे उस दे करके असी

0: नए ही साल हो गए, देखो जी वन
1: जी
0: महोत्सव बनाने आ रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, तो इसलिए मनाउंदे आ ता कि असी ये जो हरियाली अपने आस पास देखते हाँ, खास तौर पर बरसातों के दिनों दे ना, जी होर भी खूबसूरत तरीके साढ़े सामने आती है, इस तरह बनी रहे, क्योंकि जिस तरह वड्डी गिणती दे विच साढ़े आस पास हरियावल घटती जा रही है, कंक्रीट वधदा जा रहा है, आने वाला जो समा है वह खतरनाक साबित हो सकता है। साढ़े आस पास हरियावल ही ना हो ता सोच के भी किंज महसूस होंदा है।
0: बिल्कुल, और ये जिहड़ी हरियावल है ना, इस दे ना होण दे पिछे कारण यही है कि भई असी बूटे तो बहुत ले लैने है ना, खरीद के भी लियाने, और अजकल तो रिवाज भी चल पे कि बूटे ही जड़े ने वो गिफ्ट विच दिते जांदे ने, पर वो बहुत छोटे छोटे पौधे होंदे ने, और सानू हमेशा ही लगता है कि असी गमलियां दे विच छोटे छोटे गमलियां दे विच अपने आस पास पौधे लगा ले ने, ते चलो जी कुदरत दे प्रति जिहड़ा साडा फर्ज है वह असी निभा लिया है ना
1: जी। पर जिहड़ा साडा फर्ज है ना, उस तो बाद ही शुरू हुंदा जदों असीं एक पौधा लगाउंदे हाँ जां अपने घर दे विच पौधा लैके आउंदे हाँ। प्रिया जी, कुछ किताबां भी ने, कुछ इहो जिहियां खोजां भी ने जिन्हां दे विच इह कहा गया है, साबित करन दी कोशिश कीती गई है कि जे ये पेड़ पौधे बोलदे हुंदे साडे नाल संवाद करदे हुंदे तां सानूं की कहिंदे,
0: जी
1: कि उहनां नूं वी उन्नी ही खाद की लोड़ है, वह भी उस तरह महसूस करदे ने, वह डरदे ने, खुश हुंदे ने, ते ये जिहड़ा लगाव है ना इंसान उदों महसूस कर पाउंदा है जदों उसका वाकई मन तो प्यार हुंदा है उन्होंने सवारण का, सजाउण का, उन्होंने केयर करन का।
0: बिल्कुल, ये भी ना एक तरह का रिश्ता ही है, मैनूं लगता है कि जदों असीं कोई बूटा लाने आ, खास तौर पर कई लोग होंदे ने, मैं इहो जिहे लोगों नूं जानदी हाँ परसनली निजी तौर पर, कि भी वो किसी अपने घर का कोई भी जी हुंदा उहदे जन्मदिन ते एक बूटा लाते हैं, और कई बारी उही उन्हां दी एक ना याद भी बनता, और उस याद नूं संजोण दे विच वो उसकी देखभाल करनी शुरू कर देंदे ने।
1: जी बिल्कुल जी, रुखां दे नाल जो लगा है ना, उससे बहुत सारे कवितावां लिखियां गईयां ने, बहुत सारी शेरो शायरी हुई है, लिखतां लिखियां गईयां ने, बहुत सारे इहो जे लोग ने जो रुखां दे नाल बहुत लगाव करदे ने, कई अंदोलन चले ने जो रुखां नूं लै के ने। जेकर असीं साडे देश दे महान गायक किशोर कुमार उन्हां दी गल करिए ना, उन्हां दा रुखां नाल बड़ा प्यार सी, उह अपने घर दे विच जो रुख लगाउंदे सन उन्हां दे नाम भी रखदे सन, उन्हां दे नाल गल्लां बातां भी करदे सन, ते रुखां दे नाल उन्हां दे जो किस्से ने उह वी बड़े मशहूर ने।
0: बिल्कुल, ते जापान दे विच तां इहो जी कहानी जिहड़ी उन्हां दी है, दंत कथा फोक टेल ही है, जिस दे विच उह कहिंदे ने, या कहा जांदा कि भई साइकोलॉजी दे जिहड़े ने माहिर उन्हां ने एक्सपैरिमेंट्स कीते ने कि एक जिहड़ा छोटा जिहा बूटा है, जे तुसीं उहनूं नैगेटिव बुरे शब्द कहोगे, उहनूं कोसोंगे, ते उह मुरझा जांदा, पर इसे तरह जे उसनूं तुसीं हल्लाशेरी दिंदे हो ते भई उह किद्दां फलदा फूलदा, इहदा मतलब है कि उह वी साडे वगर महसूस करदा चीज़ां।
1: बिल्कुल जी, जेकर असीं अपने बच्चों जदों पालदे पोसते हाँ उन्हां नूं असीं उत्साहित करन दे लई कुछ शब्द कहिंदे हाँ, कुछ उन्होंने लिए असी यह जे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिस नाल वो होर जिंदगी प्रति उत्साहित होन, आशावादी होन, ते एनर्जेटिक तरीके दे नाल होर अपना कामकाज कर सकन। इसी तरह ही ये पौधे भी जेकर असी हर रोज़ बैठ के उन्होंने नाल गलबात करांगे, उन्होंने कुछ चंगा बोलांगे, चंगा महसूस करावांगे, तो उसका नतीजा भी साढ़े सामने आएगा। सो कुल मिला के गल असी यही कहना चाहते हैं कि पौधे लगाना ही साड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामना भी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये गल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वर्ण महोत्सव हफ्ता मनाया जा रहा है।
0: जी, ते पूनम जी, मैनूं लगदा है कि कुदरत नाल ही जुड़िया कोई असी अगे एक गीत वल भी वध सकदे हां। जी
1: बिल्कुल जी, कुदरत तां हर जर्रे दे विच हर रूप दे विच नाल जुड़ी होई है, कुदरत एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा सानूं इह वी है कि संगीत भी साडे कोल है, असी सुन पाउंदे हां, महसूस कर पाउंदे हां, ते इह जो संगीत दी तुसीं गल कीती है ना, इह सुरिंदर कौर उहनां दी आवाज़ दे विच सुनण वाले नूं एक खूबसूरत गीत सुणाउंदे आ फिर
0: जी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें

0: राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दिए अज तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

नंबर एक बार फिर सुन लो 9349 4396 9046। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40। नमस्कार।

0: सुरक्षित रहो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फौजी वीरो, पेश है तुहाडी खिदमत दे विच जान तेरे नाम फिल्म चो लिया गया गीत कुमार सानू ते आशा भोसले दी आवाज़ दे विच।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहरुल-काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरक़ी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नज़रिए, नीज आज़ाद और खुले भारत बहरुल-काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नज़र को मज़ीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुँचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वजीर आजम के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आइन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर,

0: छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 तीन गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है, प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीराली। इस दे नाल ही सुनते हाँ प्रोग्राम दे अगले गीत दी सुनते हाँ। अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म वीर जारा विच लिया गया ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ तकानेन। दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा

0: में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण

0: की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी बिल्कुल, हर कोई जो है दिल दा राजा हुंदा है ना, ते कई दिल दी राणियां भी हुंदियां ने। ते पर कहिंदे ने कि सब तो पहला अपने आप नू जो है तुसी प्यार करदे हो ना, तां तुसी दूजियां नू भी प्यार कर सकदे हो। सो सब तो

कारण सेवा थे। एक बार पता जो है, फिर तो पता जो है नोट कर लो, इस प्रोग्राम का नाम लिखना जरूरी है जी, चिट्ठियां मिठियां, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड 144001। तो इस पते ते तुसी जो है चिट्ठी पानी है, यानी कि इस पोस्ट कार्ड के दूजे पासे तुसी अपना नाँ, जगह का नाँ, गीत दे बोल लिख के भेज दो। ये छोटा जा काम करके पहुँच चुके ने साढ़े कोल राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान ते नाल इन्हां दे नीरज कुमार चौहान, पिंड आजमवाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बूक, निशान सिंह, सीरत कौर, कीरत कौर ते दादी जसवंत कौर। पिंड कुणियाणा तो लिख रहे ने भोला सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, पोतरी रितमन जोत, पोतरा गुरतेश्वर ते नाल इन्हां दे अभिजोत गुणताज, दोस्त ने बलतेज सिंह ते सारे साथी। मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप गुगलानी ते जग्गी दुआ। श्रीगंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन, दिनेश ते नरेश कुमार। ते इन्हां सारे दी फरमाइश ते आपां सुन रहे जी ए वाला गीत काका दी आवाज़ विच, ते तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

वाजिवा गिप्पी गरेवाल ते मन्नत नूर दी आवाज विच प्यारा जिहा गीत सुनिया ते गल कीती जी पहला चादरां ते अहमद दी ते हुण गल करदे हां कुर्ते दी। जो बिल्कुल चादरे दे नाल टीला टाला कुर्ता पाया जांदा है। पुराने समय विच पंजाबी मर्द गोड्यां तक लम्मा कुर्ता पहनदे सी ते जो है सूती कपड़े दा बनिया हुंदा सी ते इस नूं पाउणा जो है बहुत सौखा ते इह जो है गर्मी विच बहुत ठंडक दिंदा सी। ते जे मैं इतिहास ते सभ्याचार दी गल करां ते विवाह ते त्यौहारां विच जो है विसाखी दे मेलियां सिख विआहां गुरपुरब अते भंगड़ा पाउण समय इह पहरावा विशेष तौर ते पहनिया जांदा है ते सौखा डिज़ाइन जी बिल्कुल इस विच तुसीं गर्मियां विच ढीले कपड़े जो है पसीना सोख लैंदे ने ते हवा आसानी नाल लंघ जांदी है। सो डिज़ाइन जो है सौखा पाया जाता है, ज़्यादा जो है औखा जो डिज़ाइन पा के नहीं जो है पाया जाता। सो सूती कपड़े दे नाल जो है इस नूं बनाया जाता है ते हर दिन त्यौहार विच बहुत ही मज़े दे नाल जो है ये पाया जाता है। ते लो जी हुण चिट्ठियां दी जे मैं गल करां, चिट्ठियां बहुत सारियां आ रही ने। जमशेदपुर तो लिख रहे ने हंजिंदर एंजल ते सारा परिवार, ते सानूं लिख रहे ने फिलौर तो गुंजन बबीता ते हर्ष, फतेहगढ़ तो रामनाथ ततापुरी ते सुखमनजीत ते नाल सहजप्रीत कौर, ते लिख रहे ने फाजिलका तो कुलवंत गिल ते मैंडी ते बेबी, पिंड फाजिलका तो साडे कोल बहुत सारे जो है खत आउंदे ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहें ते मेरा जहां, महादेव घाट अमलेश्वर तो डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति ते रियांश, ते कई इस तरह के दोस्त आते ने दस दस चिट्ठियां पा के भेजते हैं। शायद मैं हमेशा ही कहती हाँ कि उन्होंने साढ़े उत्ते विश्वास नहीं है ता ही वो जो है हमेशा दस दस चिट्ठियां सानू भेज देंगे ने। तो बई सारे की चिट्ठी पढ़ी जाती है, भाई इन्नी सारी चिट्ठियां होंदिया भी नहीं, असी जो है लभ लभ के थोड़ी चिट्ठियां पढ़ रहे होंगे कि कई रब्बा कोई इस तरह की चिट्ठी आ जाए जो रिपीट ना हो। हुण लिख रहे ने सादुल शहर तो प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान, ते इन्हां सारे की फरमाइश ते आपां सुना रहे जी सुरिंदर कौर की आवाज़ में प्यारा जो गीत है सुनते हैं। तो ये गीत लोक गीत है ते बहुत ही प्यारा जो गीत है सुनते हैं। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

माफ करना सुरेंद्र कौर की आवाज़ में लट्ठे की चादर आप नहीं सुना पाए, किसी तकनीकी कारण करके जो है गीत इदा ही रुक गया, पर अमर नूरी की आवाज़ में सुन दें जी इस गीत नूं।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां डीटीएस दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते पटेल नगर मलाट तो लिख रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी गगनदीप ते बेबी आरजू पेंड नथाणा पेंड जिला बठिंडा तो लिख रहे ने हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता कोई भी गीत सुनना चाहते ने रायण तो लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला सोनू ममता मोक्ष दीक्षा सुशांत ते विक्रम जयपाल राजपुरा तो लिख रहे ने हरदीप सिंह

जगवीर ज्वाला डॉक्टर धर्मवीर ते जगसीर। जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो लिख रहे ने बलवंत कुमार राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश ते ऋषि वर्मा ते सुनना चाहते ने हर्षदीप कौर की आवाज़ में कोई भी गीत लो जी सुना रहे हैं हर्षदीप की आवाज़ में एक गीत है तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स ते, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स ते, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स ते, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स ते आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 4 बज रहे ने, साडी दूजी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच लो सुणदे हां मुख समाचार।

को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरा राजन। ए फरमान सबना नू अपना मित्र समझण दी महान प्रेरणा है, पर सच्चे मित्र दी पछाण होनी अत्यंत लाजमी है। सच्चा मित्र केवल अकाल पुरख परमात्मा है, तांते फिर जीवां दा सने उस अकाल पुरख संग होना चाहिदा है। उही सज्जन है, उही मीत है, उस दे घर विच ही सब कुछ है। की है जो उस पासों प्राप्त नहीं हुंदा, बस उस दी किरपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। राग कानड़ा विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, जन को प्रभ संगे अस

स्नेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सबके है। सरवण करदे आ भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

0: जन को प्रभ संगे स्नेह साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सब के है। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। दरअसल सच्चा मित्र वो है जिस दे नाल मेल स्थापित कीत्या चंगी मत प्राप्त होवे अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जावे ते अज्ञानता पलायन कर जावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच ऐसे अनेका फरमान हन जिना दिसंदड़िया दुरमत वन्या मित्र असाडड़े सेई। सुनदे हां तेजिंदर सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: गुरबाणी अनुसार साडे असल मित्र उही मनुख हन जिन्हां दा दीदार होया भैड़ी मत दूर हो जाती है, पर अजिहे मित्र सारा जगत भाल वेखण उपरंत भी विरले ही मिलते हैं। गुरु अर्जन देव जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 520 ते पवित्र फुरमान है, जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वंजै मित्र असाडड़े सेई हौ टुंडेंदी जग सबाया जन नानक विरले की। सिख धर्म विच निता प्रति कीती जांदी अरदास दे अंत विच अकाल पुरख पासों सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे मंग जरूर मंगी जांदी है। इस मंग पिछे गुरबाणी दा ये पावन फुरमान प्रेरणा स्रोत बनता है, जिस विच गुरु जी फरमाउंदे हन आवे साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठियां। अर्थात हे प्रभु आप जी दे भगतां दा दर्शन कीत्यां मालक प्रभु साडे मन विच आ वसदा है। साध संगत विच अपणियां मन दी मैल कट्टी जांदी है। साध संगत विच रह के सिफत सलाह दी बाणी पढ़िया सेवक दा जन्म मरण दा डर कट्टिया जांदा है। गुरु नानक देव जी महाराज समझाउंदे हन कि मैं उन्हां सज्जणा मित्रां तों सदके हाँ जिन्हां उत्ते माया दा पर्दा नहीं पिया, जिन्हां संगत करके मैं उन्हां नाल दिली सांझ पाई है। जिन्हां गुरमुखां नाल दिली सांझ पै सके वो सज्जण कदे भी भुलणे नहीं चाहीदे। उन्हां दा दर्शन कीत्यां आत्मक खुशियां पैदा हुंदियां हन। वह सज्जन अपने सतसंगियां नूं अपनी जान नाल ला के रखदे हन, जिंद तो प्यारा समझदे हन। उन्हां विच सारे गुण ही गुण हुंदे हन, अवगुण उन्हां दे नेड़े नहीं टुकदे। पावन अंक 765-66 ते गुरफरमान है, हाउ बलिहारी साजना मीता अवरीता ए तन जिन स्यों गाढ़िया मन लीड़ा दीता। संसार विच विचरियां कार विहार करदियां गली वाती कई अजिहे व्यक्ति मिलते हैं जो मित्रता दा दम भरते हैं, मित्रता ही जताते हैं। वेले कुबेले कदे कदाई काम भी आते हैं, पर इन्हां विच्चों बहुते स्वार्थी ही हुंदे हैं। मन विच कोई ना कोई खाहिश जरूर लुकी हुंदी है, पर सच्चा मित्र इउं प्रतीत हुंदा है कि यह कोई किसी एक जां विशेष वर्ग का नहीं बल्कि सभना का साजन है जो सभना नूं प्यारा लगता है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज अजिहे मित्र का संकेत करदे पावन अंक 555 ते फरमा

जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कौ कह का की कमिया। इस शब्द गायन कीता सी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: ਹੈਲੋ,
2: ਯਹ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਆਜ ਹਮ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਚਲ ਰਹੇ ਖਾਤੋਂ ਸੇ ਅਨਿਵਾਰਯ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਯਦਿ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਕਿਰਪਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਓਂ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ 9 ਦਬਾਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।
3: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
4: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत

0: क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी नंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच बरसातां च पानी दी संभाल किदां कीती जाए इहदे बारे डॉक्टर इहदे बारे उपेंद्र कुमार होणां नाल कीती गल्लबात सुनाई जाएगी। इस तों इलावा तिलां दी काश्त बारे डॉक्टर अमित कौर होणी दसणगे। गीत संगीत होएगा कल दे प्रोग्राम। काम दीआं गल्लां ते मौसम दा हाल वी दस्या जाएगा। शाम 7:40 ते जसप्रीत कौर फलक होना दा काव्य पाठ सुनोगे प्रोग्राम विविधा तहत। रात 9:45 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9 ते 9:15 बजे सुनोगे स्पॉटलाइट। 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक फर्श विच उगे रुख। भाग लैण वाले कलाकार होणगे वीना धीर, बी एन शर्मा ते निशिकांत साहिर। रात 10:02 ते सुनोगे हिंदी काव्य गोष्ठी। भाग लैण वाले कवि होणगे प्रेम विज, सागर सूद संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोश। रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तो कारा जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाओ। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
0: जेल तो तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: आरबीआई कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसदा?
2: गुड्डी दी फीस दा।
3: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम। तनखा एडवांस च भेजी है।
4: RBI कहंदा है
5: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी लहर सुधारा डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। देश अज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म वरीगंढ से उन्होंने नमन कर रहा है। पंजाब ते चंडीगढ़ विच भी इस संबंधी प्रोग्राम आयोजित। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलियां 2024-25 विच पंजाब के 2 ते हरियाणा के 1 विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलानिया गया है। पंजाब सरकार वल्लों ऑनलाइन NRI मिलनी 8 जुलाई नूं ते भारत दी मर्दां दी अंडर 18 हॉकी टीम लई 11 दिनां दा राष्ट्रीय कोचिंग कैंप चंडीगढ़ दे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस विच अज तों 17 जुलाई तक। हुण खबरां विस्तार नाल। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी लहर सुधारा डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। सहकारिता मंत्रालय दे 5वें स्थापना दिवस समारोह नूं संबोधन करते हुए श्री शाह ने कहा कि हरेक खेतर विच सब तो वधिया कारगुजारी दिखाउण वालियां 5 सहकारी सभावां नूं मानता देण लई रैंकिंग फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया है। गृह

0: गोई की थी है। अगले 2 तो 4 दिनों दौरान जम्मू कश्मीर अते लद्दाख राजस्थान ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश विच वी इसे तरह के हालात रहने की संभावना जताई गई है। भारत के मर्दां की अंडर 18 हाकी टीम लिए 11 दिनों का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में आज तो 17 जुलाई तक लाया जा रहा है। इस कैंप का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु बिक ने किया। यूनिवर्सिटी 5 दहाकों तो वध समय बाद अजिहे राष्ट्रीय पद्धर के हाकी कोचिंग कैंप की मेज़बानी कर रही है। एक कैंप हाकी इंडिया के सहयोग नाल भारत की AHF यूथ हाकी एशियन चैंपियनशिप 2026 दीआं तैयारियां दे हिस्से वजों करवाया जा रहा है जो कि 20 तो 25 जुलाई तक ओमान विच होण वाली है। इत्थे आखिरी तैयारी कैंप 1975 विच कुआलालंपुर विश्व कप जाण वाली भारतीय सीनियर हॉकी टीम लई लाया गया सी जिसने पाकिस्तान नूं 2-1 नाल हराया ते विश्व कप खिताब अपने नाम कीता सी। साबका भारतीय हाकी कप्तान अते भारत दी मर्दां दी अंडर 18 हाकी टीम दे मुख कोच सरदारा सिंह ने खिडारियां अते कोचिंग स्टाफ नूं हमायत देण लई यूनिवर्सिटी दी शलाघा करदिआं दस्सिआ कि ओह PU कैंपस विच भारतीय हाकी टीम दे अजिहे होर सिखलाई कैंपां दी सिफारिश करनगे। ते आखर च खास खबरां इक वार फिर तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के हिंद प्रशांत दौरे तहत आज इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सहकारी लहर सुधारा डिजिटाइजेशन ते पेशेवर प्रबंधन राही विस्तार दे एक नवे गेट च दाखिल हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों दरमियान उतों के लोगों ने भारत सरकार तो मदद की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबों च भारी मीह की की पेशेनगोई ते मर्दां दी अंडर 18 हाकी टीम लई 11 दिनों का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कैंपस में अज तो 17 जुलाई तक। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां खत्म हुईयां। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे कल सवेरे 8:30 ते। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। आहुन प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी काव्य पाठ सुनदे आ। काव्य पाठ करनगे जसप्रीत कौर फलक।
1: मेरी कविता का शीर्षक है कैक्टस के फूल। बादलों के साए में आकाश की आगोश में, बादलों के साए में आकाश की आगोश में, मदमस्त हवाओं ने धरा की सितार पर जैसे ही छेड़ी सरगम, कायनात गूंज उठी मधुर संगीत से। कैक्टस बनी जिंदगी में फिर से खिलने लगे नरगिसी फूल, मिट्टी से उठने लगी सौंधी सी महक, खुशबू में डूबा रोम रोम एक आरती होने लगी, कवि मन से घर आंगन से उमंग भरे तन से, प्रेम भीगे नैनों से बूंदों भरे सावन से, दूर फलक से और क्षितिज के छोर से नजर आने लगे फिर तुम, स्वप्निल मन और बंद पलकों में एक बार फिर से धड़कने लगी जिंदगी, एक बार फिर से धड़कने लगी जिंदगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कर रहा है आम का पेड़, नीम और शहतूत का वृक्ष, बेरंग गमला खाली खाली पायदान, वीरान कमरा और कमरे में बोलती आवाजें, डायरी के

गए पन्ने, तरतीब से सजी हुई किताबें जो अभी भी पड़ी हैं पुरानी बुक शेल्फ में, चढ़ी हुई है मिट्टी एल्बम में बीती हुई यादों की, पड़ी हैं मेरे नर्म एहसासों की निशानियां भी, सजी है मखमली कालीन हरी घास जैसी पगडंडी दर से दीवार तक, और प्रतीक्षा कर रहा है वो सूखा हुआ एहसासों से लबरेज गुलाब भी, और प्रतीक्षा कर रहा है वो सूखा हुआ एहसासों से लबरेज गुलाब भी, जो छुपाया था कभी दुनिया की नजरों से जिंदगी की किताब में, जो छुपाया था कभी दुनिया की नजरों से चुराकर जिंदगी की किताब में, आज उम्र के इस दौर में मालूम न था फिर तुझे देखने भर से जाग उठेगी वो डायरी वो धूल भरी किताबें, फिर से तुझे देखने भर से जाग उठेगी वो डायरी वो धूल भरी किताबें, फिर से महक उठेगा वो सूखा हुआ गुलाब, चहक उठेंगी वो हसरतें, झूम उठेंगे वृक्ष पौधे, खिल उठेगा उन पर फिर वही यौवन। हाँ, कई वर्ष लग जाते हैं मोहब्बत को समझने में, हाँ कई वर्ष लग जाते हैं मोहब्बत को समझने में। कविता का शीर्षक है निशानियाँ। कागज़ के चंद टुकड़े मैंने संभाल लिए, कागज़ के चंद टुकड़े मैंने संभाल लिए, चंद अल्फाज जो पसंद आए दिल में संजो लिए, कुछ शब्द जो लिखे मगर भेजे ना गए, लिबास बदलते कुछ खूबसूरत पैगाम, कुछ अक्स यादों के धुंधले साए लिए, सौगात समझकर संभाल लिए, चंद बोल जो बोले ना गए अनसुने रहे, चंद बोल जो बोले ना गए अनसुने रहे, कुछ कही अनकही बातें, कवर पर तेरा नाम लिखी किताबें, कुछ मीठी सदाएं, खतों की कुछ सतरें जो अभी भी सजी हैं मन की सलेट पर, पलाश टेसू समझकर संभाल लिए, कुछ सुलगते ख्वाब तुम्हारे नैनों की चमक, कुछ शिकवे शिकायतें जो मैंने ना किए, कुछ रंग बदलती तस्वीरें हाथों में लिए, इंतजार के दिए नजराने समझकर संभाल लिए, जिंदगी की चंद परतें जो कभी उठाई ना गईं, जिंदगी के कुछ अंक जिन्हें खोला ना गया, जिंदगी के कुछ साल कुछ इंद्रधनुषी सपने शबनमी एहसास समझकर संभाल लिए, वो अब तलक महफूज हैं मेरी चुनरी की गांठ में, वो सब अब तलक महफूज हैं मेरी चुनरी की गांठ में। कविता का शीर्षक है शून्य से आगे। मुझे कभी भी रंज ना होगा, मुझे कभी भी रंज ना होगा, करती रहूं ताउम्र तेरा इंतज़ार, उन बेथलहम की कलियों की तरह जो बेकरार रहती हैं खिलने

0: के लिए। हाँ, पूर्णमासी की रात को खिलती तो हैं जरूर, मगर फना होने के लिए। ठीक उसी तरह एक बार मैं भी तुझ में समाकर फैल जाना चाहती हूँ महक की तरह, और फिर तेरी बाहों में सिमट जाना चाहती हूँ शून्य से भी आगे, और फिर तेरी बाहों में सिमट जाना चाहती हूँ शून्य से भी आगे। कविता का शीर्षक है ख्वाब। मेरे ख्वाब का रंग नहीं था मौसमी रंगों जैसा, मेरे ख्वाब का रंग नहीं था मौसमी रंगों जैसा, ना वो पत्ता जो पड़ जाए पीला, ना ऐसा फूल जिसकी पंखुड़ियाँ आंधी से बिखर जाएं। मेरे ख्वाब के बीज तो मिट्टी में मिल गए, मौसम बदलते ही उनके अंकुर फूट पड़े और फूल बनकर खिल पड़े हैं। अपने ख्वाबों को मैंने नींद से नहीं रक्त से सींचा है, अपने ख्वाबों को मैंने नींद से नहीं रक्त से सींचा है।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕਤਾ ਕਾਵਿਆ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਹੌਨ ਚੰਦਨ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ।

आकाशवाणी निरंतर पेश है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। और दोस्तों, जिंदगी वाकई बहुत हसीन है, बहुत खुशनुमा है, बशर्ते असी उन जीण दे तरीके नूं वधिया तरीके नूं अपना लईए। सानू अपने अंदर दी ताकत नूं पछाणना बहुत जरूरी है। ताकत पछाणीए और वड्डी सोच रखिए। वड्डी सोच रखांगे तां ही असी अगे वध पावांगे। अंदरली ताकत नूं भुल के छोटे दायरे विच ना रह जाइए। दूसरी एक बार दी गल है कि एक जंगल विच एक बाज दा अंडा किसी तरह जंगली मुर्गे दे आलणे विच आ डिग्गिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे विचों बाज दा बच्चा जदों निकलिया, वह मुर्गे दे बाकी बच्चों नाल भी वड्डा होण लग पिया, उहनां नाल रहण लग पिया। वो उही कुछ करदा जो बाकी मुर्गे करदे सन, जमीन खुरच के, दाणे चुगणा,

कुड़ कुड़ करते रहना ते डर के थोड़ी जी उड़ान भरना ते फिर वापस आ जाना। वो पूरी तरह मान चुका सेगा कि वो एक बाज दा बच्चा नहीं बल्कि एक मुर्गी दा ही बच्चा है। एक दिन अचानक उसने आसमान दे विच एक बहुत ही शानदार पंछी नूं उड़ते देखिया जो बिना खंभ हिलाए हवावां नूं चीरदा होया उचाइयां ते उड़दा जा रहा सी, उड़दा जा रहा सी, अगे वधदा जा रहा सी। बाज दे बच्चे ने हैरान होकर पुछया कि वो कौन है। मुर्गी ने जवाब दिता, वो पंछियों दा राजा बाज है। वो बहुत उच्चा उड़दा है, उचाइयां भरदा रहिंदा है, पर तू स्वर्गा नहीं बन सकता क्योंकि तू तो एक मुर्गा है ना। बाज दे बच्चे ने उस गल नूं सच मन लिया तो उसने कदी उच्चा उड़न की कोशिश नहीं की। एक दिन वो मुर्गे की जिंदगी जींदा होया ही मर गया। इस करके दोस्तों असीं भी कई बार अपने आले दुआले के लोगों दी नकारात्मक गल्लां सुन के अपने आप नूं छोटा समझ लैंदे आ, पर साडे अंदर बाज वर्गी उड़ान भरन की ताकत हुंदी है जिहनूं पछाणन की लोड़ हुंदी है। ते अपनी ताकत नूं पछाणो ते अपनी सोच उच्ची ते सकारात्मक रखो ते जिंदगी विच अग्गे वधदे जाओ। ते दोस्तों असीं प्रोग्राम नूं अग्गे वधाउने आ ते प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म एक दूजे के लिए तो इस गीत नूं गाया लता मंगेशकर ते अनूप जलोटा ने।

0: आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम ऐसे तारे जारी रखेंगे इस सुनेहे तो बाद।
1: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगते।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, और जिंदगी नू हसीन और खूबसूरत बनाने वास्ते सानू पुराने गले शिकवे गुस्से जड़े छड़ देने चाहिए है। हर एक नू माफ करना सीखो, नकारात्मक सोच नू भी उत्थे ही छड़ दो। पुरानी जड़ी गल्लां है, कोई गुस्से गले शिकवे है साडे दिमाग ते जड़े बोझ पांदे है, उन्हां तो छड़ के हर एक नू माफ करदे होए अगे चलदे रहना चाहिए है, क्योंकि जिंदगी दा नाम ही है चलना। हाँ दोस्तों, तुहानू एक छोटी जी कहानी सुनाना है कि एक बार की गल है, एक नौजवान एक मानसिक गुरु कोल गया ते कहण लगा, क्योंकि काफी दिमाग ते भार लैके चल रहा सीगा, कहिंदा कि मैं अपनी जिंदगी विच बहुत परेशान है, पुरानियां गलतियां लोकां दे दित्ते धोखे अते माड़ियां यादां मेरा खेड़ा नहीं छड़ रहीआं। गुरु जी ने मुस्कुरा के उहदे हथ विच एक गंदे पानी दा गिलास फड़ा दिता अते कहा कि इस नूं सिद्धा फड़ के खड़े रहो। नौजवान खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद गुरु जी ने पूछा, कोई तकलीफ? नौजवान ने कहा, नहीं गुरु जी कोई तकलीफ नहीं। 1.5 घंटे बाद गुरु जी ने फिर पूछा। नौजवान ने कहा, हाँ हुण मेरा हाथ थोड़ा दुखन लग पिया है। गुरु जी ने कहा, फड़ी रखो गिलास नूं हजे। 2 घंटे बाद नौजवान का हाथ बुरी तरह कंबन लगा और दर्द

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और प्रोग्राम विच अगला गीत कुर्बानी फिल्म तो इस गीत नु गाया है मनहर आनंद ने।

आकाशवाणी लंदर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। और दोस्तों साड़ी आजकल दी जिंदगी जड़ी है बहुत तेज हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। सानू हर चीज दा जड़ा रिजल्ट है उससे वेले चाहिदा, इंस्टेंट चाहिदा है कि हर चीज दो मिनट दे विच मिल जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। पर मेहनत जड़ी है मेहनत करके हौली हौली फल मिलता है। जेकर मेहनत करन दे बावजूद भी नतीजा नहीं मिल रहा तो मैं तुहानू कहानी सुनावांगा जिहड़ा कि तुहाडे सुनने लई बहुत जरूरी है। दोस्तों जो चीनी बांस यानी चाइनीज बैंबू जड़ा होंदा ना, उन्हें जो बीजा जाता है ना, तो उन्हें जमीन विच लगा के उहदे बीज नूं लगा के, तो पहले पहले पांच साल बहुत औखे निकलते। पहले साल उसनूं पानी अते खाद दिती जांदी है पर जमीन विचों कुछ भी बाहर नहीं निकलता। दूजा साल लंघ जाता है, तीजा साल भी लंघ जाता है, चौथा साल भी आके चला जाता है, पर चार साल तक लगातार मेहनत करने के बावजूद जमीन ते हरियाली का एक भी तिनका नजर नहीं आता। बैंबू का कोई भी बूटा जो सानू जमीन तो बाहर कोई पत्ता भी निकलता नजर नहीं आता। उस तरह जे कोई आम इंसान होता तो हिम्मत हार के पानी देना ही बंद कर देता है। पर फिर आता है पंजवां साल, और पंजवें साल विच सिर्फ छे हफ्तों में यानी कि 45 दिनों के अंदर वह बांस का पौधा जड़ा है जमीन पाड़ के बाहर जो निकलता है तो 80 to 90 feet की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और सवाल यह है कि वह बांस सिर्फ 6 हफ्तों में वध्या? नहीं, वह उन्हें 5 सालों में भी वध रहा है जदों वह जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है ताँ जो 90 feet ऊंचा दरख्त का बोझ वह चल सके। तो दोस्तों इस तरह जेकर असी भी जिंदगी विच मेहनत कर रहे हैं पर नतीजे नहीं आ रहे तो निराश होने की कोई लोड़ नहीं, तुसी असफल नहीं हो बल्कि बांस दे पौधे वांग अंदरों मजबूत हो रहे हो, अपनियां जड़ां पक्कियां कर रहे हो। जब तुहाडा वक्त आएगा तो तुहाडी सफलता की उड़ान सबनू हैरान कर देवेगी। इस करके हमेशा सबर रखो ते मेहनत करते रहो और मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। पर प्रोग्राम विच इस वेले वक्त हो गया है एक गीत दा, और एक गीत है जी कुमार सानू ते अलका याकनिक दी आवाज च, फिल्म दा नाम साजन चले ससुराल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1। ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार।

0: शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और प्रोग्राम दी अगली पेशकश एक गीत शान फिल्म तो जिसनु गाया है आशा भोसले ने।

आशा भोसले दे गाए शान फिल्म दे इस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे खत्म करन दी दिओ इजाजत। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 9:45 सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो समाचार संध्या, रात 9:00 सुनोगे न्यूज़ एट 9 ते रात 9:15 सुनोगे स्पॉट लाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत

0: को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक

0: भाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित

0: करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askyayan के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरि को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrindip Andashgupto, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं।

0: चाचा आ जाओ, वक्त हो गया।
1: चाचा भी साढ़े कमाल ने, शाम के 5 बज गए ने, दूध लैण का समा हो गया। बस किसी गल के खेड़े ना पै जा, हुण घर के शीशिया की शामत आई हुई है।
0: चाचा चाचा
2: मैं आ गया, तू देख ते जा, हुण मैं खाना खाने वाले मेज के खेड़े पै जाना। ऐसी शामत आई समझ।
1: ओ सॉरी, तुसी सब कुछ सुन लिया।
2: ते तू केड़ा गलत आख्या है, आ दोवें बोतलां फड़ा मैनू, मैं दूध ले आवां।

0: Anya.
1: आ गए। ये फूल बड़ा सोना है, कितों ले अंदर? अच्छा
0: सिटी गार्डन चो।
1: अंदर तो आओ। अच्छा
0: ठहर भी ना, मैं इस फूल नू एडी दूरों लेके आया, तेरे चूड़े विच तला लवा।
1: तुसी बस
0: देख तेरे चूड़े विच किन्ना सोना लग रहा है।
1: अच्छा चलो हूँ डाइनिंग टेबल पे, चाह तैयार है।
0: ते मेरा दूध?
1: मिल जाता है बैठ तो जाओ
0: माय डियर इकलौती पत्नी, मेनू घर वड़दे ही दूध मिल जाना चाहिए था।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਗੋਂ ਨਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਆਇਆ।
2: ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ।
0: ਚਾਚਾ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ,

0: ओ वड्डी लगन के मालक सन, उन्हां दा कथन सी आदर्श काम विच नहीं लगन विच हुंदा है। मैं चाह बनावा, तुसी तो सारे मेरे मुंह वल वेख रहे हो, दलील दी गल करदे हो ते जमाना देखदा रह जांदा है। चंगा मैं चाह बना ही लियांदा है।
1: कुमार चाचा जी भी कमाल दे आदमी ने यार।
2: बहुत चंगा सुभा है चाचे दा।
1: वो तां लग ही रहा है।
2: बिना तुसी चाचे दी मदद करो,
3: अच्छा।
2: मैं सेठी साहब नू नक्शा विखा के लेना।
1: कुमार साहब फर्श तो बहुत मजबूत ने।
2: फर्श ते छत्ता ने दोवें पक्के होने चाहिए ने, छत डिगे ना ते फर्श पाटे ना तां बंदा सुरक्षित।
1: जी
2: आसे पासे दे तके सहन दी शक्ति तां ईश्वर ने हर एक नू दित्ती होई है।
1: वाह, ये तो बड़ी फलसफाना गल है। यह नक्शा है कुमार साहब?
2: हाँ जी, ये वे मेन रोड ते ये साड़ा प्लॉट।
1: ठीक
3: चाचा, शीशियां तो बाद केड़ा प्रोजेक्ट है?
0: शीशियां
3: शीशियां
0: हाँ, गुसलखाने दे नुक्कर आले शेल्फ, किचन दे थले दे रैक ते उपरली अलमारी विच दवाई आलियां सब शीशियां गड्डियां ने।
3: अच्छा चाचा, ओ आपा कुछ गमले भी खरीदे सन। कुमार जी कह रहे सन इंडोर प्लांटिंग कर लिए।
0: दुरुस्त, शीशियां तो बाद गमले।
3: हाँ, मेरा ख्याल है चार ड्राइंग रूम विच, तीन पोर्च विच, दो बालकनी विच ते एक साड़ी बेडरूम विच।
0: इस वेर ता माफ कर दिता, फिर ये गल्ला कि बेडरूम विच कोई कमला नहीं, उठे कमले की कोई दलील ही नहीं।
3: पर प्लांट तो चाहिदा है ना?
0: हाँ, प्लांट जरूर होवेगा। मैं रब अगे प्रार्थना करांगा मेरे बच्चों के बेडरूम विच एक हरिया भरिया प्लांट होवे, बहुत सोहना ते प्यारा प्लांट। फिर मैं उस छोटे जे प्लांट नू पालांगा उसे मोह नाल जिस नाल हांडा साहब ने मैनू पालिया सी।
3: चाचा एहो जी गल्ला ना करो, मेहमान की आखन।
0: कोई नहीं बेटा, फिक्र ना कर, मैं सब समझ गया।
1: नहीं, प्लांट का की हुंदा जी, जिथे मर्जी ले आओ ते जिथे मर्जी ला दियो।
2: हाँ जी, बंदा चुस्त चाहिदा है, फिर प्लांट का की है, प्लॉट भी चुके ले आया जा सकता है।
1: कुमार तू अपना प्लॉट बचा के रखी पर।
2: अच्छा, सेठी साहब को लो कि तेरे को लो?

0: किस लिए जी रहे हैं?
1: असी हाँ ये तो कदे सोचा ही नहीं।
0: साडा आदर्श की होना चाहिए?
1: कुछ भी होवे पर होना तो चाहिए ना।
0: सानू चाचे नू खुश रखना चाहिए।
1: पर असल विच ये आदर्श साडा नहीं, साडे पापा दा हो सकता है। साड़ी तो जिम्मेवारी है, ते जिम्मेवारी ते आदर्श विच बड़ा फर्क है। जिम्मेवारी मनुख के नाल नाल तुरती है, पर आदर्श हमेशा अगेरे होंदा है। जिम्मेवारी साड़ी मंजिल नहीं, आदर्श विच मंजिल शामिल है।
2: हांडा साहब नू मैं भी
1: हाँ
2: एहो सवाल पूछया सी
1: की
2: कि साडी मंजिल की है। तू ना आख्या सी एक आदर्श।
0: पर चाचा वो आदर्श की है?
2: मैं ये भी पूछया सी ते उन्हें आख्या सी एक मनुख, एक पूर्ण मनुख पढ़िया होया। ओ सच, मैं तो गल्लां विच ही पै गया। दूध दियां बोतलां तो लियां, वक्त हो गया है।

0: बीना, स्वेटर बुन रही हैं? किस लिए बुन रही हैं?
1: तुहाडे लिए।
0: बीना, तू इन्ना मेरे नाल प्यार क्यों करती है? मैं इस काबिल तो नहीं। तेरे प्यार का हकदार तो कोई आदर्श मनुख होना चाहिए सी।
1: गल्ला तो कोई तुहाडे कोलों सीखे।
0: एक आदर्श इंसान, चाचा उस दिन आदर्श मनुख की परिभाषा दस रहा सी कि पूर्ण मनुख भरिया होया। बीना, तू कदे वेख्या है अजिहा मनुख?
1: तुसी तो सचमुच बहुत गंभीर हो गए हो।
0: नहीं, वैसे मैं सोच रहा चाचे ने ठीक किया सी। सानू संपूर्ण इंसान बनना चाहिदा है, एक आदर्श इंसान।
1: चाचा भी तो एक आदर्श इंसान है।
0: हाँ, वो तो है, पर बिना चाचा बीते हुए युग का मनुख जापता है। इस युग विच इन्नी जज्बाती अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं। उन जिस गल का मैनू दुख भी है कि एक किहो जिहा समा है कि असी अजिहे सच्चे सुचे हृदय नूं भी आदर्श नहीं स्वीकार रहे। चाचा इमोशनल है, टू मच। तू दस, तू कोई वेख्या है भरिया होया मनुख?
1: हाँ, मेरे जहन में एक आदमी आता है।
0: कौन?
1: खैर, ये तो मैं नहीं दस सकती सी कि वो कौन है।
0: क्यों, ऐसी की गल है?
1: नहीं, कोई खास नहीं, पर दसिया भी नहीं जा सकता।
0: वो तेरा क्लास फेलो सी?
1: नहीं।
0: टीचर होएगा? फिर गुआंढ रहिंदा होना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: फिर मिलिया कित्थे?
1: गड्डी विच।
0: की नाम है उसका?
1: पता नहीं,
0: कितों दा रहने वाला है?
1: रब जाने।
0: करदा की है?
1: मैं पूछा ही नहीं।
0: बिना एक की मजाक है, कौन है, कितों दा है, की ना है, कुछ पता नहीं, ते फिर भी तेनू वो एक भरपूर इंसान लगा है।
1: बस यही तो उसकी खूबसूरती से।
0: बिना, तू जरूर कुछ लुका रही है।
1: नहीं, मैं कुछ नहीं लुका रही।
0: फिर तू बुजारत क्यों पा रही है? साफ दस, वो कौन है, वो तेरा की है?
1: हो, तुसी तो एवें नाराज हो रहे हो। चलो छड़ो परे, आपा की लेना उस विचों। किथे ये ना होए पे किसी नाम मालूम नु याद करके आपा दोवें गवा जाइए। इस गल नु छड्ड ही दईए।
2: इस नु छड्डन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हरेक बोतल विच दुध घट जापदा। ये ऐसे काउंटर वाली कुड़ी दी शरारत है। ये ट्रक वालिया नाल मिली हुई है। इनू छड्डन दी दलील ही पैदा नहीं हुंदी। चंगा, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करदा है।
0: वीना, जे तेरी जिंदगी विच कोई तीसरा आया है तो उस बारे मैनू लाजमी इल्म होना चाहिदा है।
1: ओहो, तुसी तो खाम खा परेशान हो गए हो। 4-5 साल पुरानी छोटी जी गल है ते तुसी राई दा पहाड़ बनाई जा रहे हो।
0: नहीं वीना, तू मैनू डिटेल विच दस।
1: अच्छा बाबा, दस दिनी हाँ। मैं दिल्ली तो ट्रेन फड़ी सी, अजमेर जाना सी। वह भी दिल्लियों गड्डी चढ़िया सी। वह नाल दी सीट ते बैठा सी, मैं बारी वल सा। दोपहर दा वेला सी, रश वाहवा सी। मैं परेशान सी कि एक बगाना मर्द मेरे बहुत लागे बैठा होया सी।
0: उसने कोई छेड़खानी की थी?
1: गल तो सुनो, उसने अपने बैग विचों एक अखबार कढ़ लिया। मेरा डर होर वध, मैनू शक सी।

0: शरारत करेगा। भला शाम वेले अखबार पढ़न दा की कम? मैं सोच रही सी कि उसने अखबार लपेट लिया ते मैगजीन खोल के बह गया।
1: जरूर गंदियां तस्वीरां वाला होएगा।
0: नहीं बाबा, तुसी गल तो सुनो। मैं चोरी अखी देखिया, लगदा सी वो कोई लिटरेरी मैगजीन पढ़ रहा सी। जीवन जो पहला मर्द सी जेड़ा,
1: जिहड़ा लिटरेरी मैगजीन पढ़ रहा सी इहो ना?
0: नहीं हजूर, पहला मर्द जेड़ा मेरे वर्गी कुड़ी नाल बैठ के भी मेरी होंद नू महसूस नहीं सी कर रहा। उदे पाने जिवें मैं कुछ होवे ही ना।
1: तेरा मतलब?
0: मतलब एहो कि जिन्ने भी लोग बसां गड्डियां विच मेरे नाल बहिंदे ने, ओह किसे ना किसे बहाने मेरे वल तकण दी कोशिश करदे ने। लोग बहिंदे घट ते हिलदे ज़्यादा, पर ओह पहला शख्सी जिसने एक पूरे सफ़र विच मेरी होंद नू बड़ी चंगी तरह बर्दाश्त किया सी। सगों एक दो घंटिया के सफ़र तो बाद मेरे विच ये तांग पैदा हो गई कि मैं उस वल वेखा, उसनू जाना ते उस नाल कोई गल करा,
1: क्यों?
0: क्योंकि मैनू उसके वर्तारे ने अट्रैक्ट किया सी।
1: बिना ये भी एक टैक्ट हुंदा है।
0: पर कुमार, मेरे लिए तो सिर्फ ये एक फैक्ट सी।
1: उंजे गल की होई कि वो एक पत्थर वांग बैठा रहा ते तू ओदे वल खिंची गई?
0: नहीं कुमार जी, ये तो उसके रवैये का केवल एक पक्ष सी। मैं उसने पूछा, तुसी कित्थे जाना है? उसने दसिया, अजमेर।
1: फिर उसने तेरे तो पूछा होएगा?
0: हाँ मैं भी दस दिता, अजमेर।
1: फिर उसने क्या होएगा कि सफ़र चंगा कट जाएगा?
0: हाँ क्या सी?
1: तो फिर उसने तेरा नाँ, तेरा घर, तेरे शौक ते कॉलेज बारे गल्लां कीतियां होणगियां। कीतियां सन ना?
0: हुक्का ही नहीं, उसने मैनू जयपुर दे स्टेशन ते चाह ऑफर कीती जिसनू मैं ना नहीं सी कर सकती।
1: रही ना औरत जात, उसने तेरा चाह दा शौक पूरा कर दिता ते वो मिस्टर आदर्श बन गया। वीना, इस तरह नहीं इंसान नू पछाणीदा।
0: कुमार जी, गल चाह दी नहीं, चाह पुछण दे अंदाज दी है। उसदे वर्तारे विच एक भरपूरता सी कुमार, एक संगीत सी जेड़ा मैं पहली बार अनुभव किया। उसने सिगरट पीण की आग्ञा मेरे तो इं मंगी जिवें राजा परजा तो पूछ रहा होए। मेरा पर्स थले डिग्गया, उसने इं चुकया जिवें ये उसे दा फर्ज सी। मेरी कूणी उसनू वज गई ते वो इं पेश आया जिवें कसूर उसे दा होए। ज्यों ज्यों सफ़र कट रहा सी, मैनू लगता जिवें मैं अजमेर नहीं उसे वल जा रही सा।
1: आ गई ना उसके मुंह विच?
0: कुमार जी, सवाल मोह दा नहीं सी, सगों एक आइडेंटिफिकेशन, एक पछाण दा सी। हो सकता है ये मेरे लिए एक हीणा जां व्यर्थ आदर्श होवे, पर इस जंगली समाज विच जदों कोई एक जानवर बंदियां वांग पेश आन लगता है तां यूं महसूस हुंदा है जिवें कोई सुपना आ रहा है। ते सुपने आदर्श वर्गे तो हुंदे आ ना। उसका वर्तारा एक संगीत सी, एक आदर्श सी।
1: जयपुर तो बात की होया?
0: गड्डी चल दी गई,
1: फिर
0: वो अजमेर पहुंच गई।
1: ओ जवान सी,
0: सोना भी,
1: जो व्याह दी गल करदा
0: तां मेरे वल्लों कोई इनकार ना हुंदा। पर उस सूरत विच शायद वो मिस्टर आदर्श भी ना रह जांदा। कुमार, उसकी शख्सियत विच स्वार्थ ना दी कोई शय नहीं सी।
1: तू उसका घर पता नहीं पूछा?
0: इन्ना तो उसने वेल ही नहीं दिता। सारा सफ़र उसकी शख्सियत ने मली रखा, उसका संगीत गूंजता रहा।
1: उसने जान लगिया कुछ कहा सी?
0: क्या सी? उन्हें क्या सी, तू एक चंगी कुड़ी है, रब तेनू सुखी जीवन दे।
1: तेनू वो याद आता है?
0: हाँ अक्सर, क्योंकि उसकी शुभ इच्छा किन्नी सच्ची सी, मैनू सचमुच सुखी जीवन मिले। वो आदर्श इंसान सी ते तू आदर्श पति।
1: तू तो मेरा साह ही कट दिता सी। पर वीना, तू पति तो इंसान विच भी फर्क पा दिता है कि पति इंसान नहीं हुंदा। शुक्र है गड्डी ने अजमेर तक ही जाना सी, जे कि अगाह निकल जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता।
2: बर्बाद हो गया, इन्ना सारा अन्न बर्बाद, तुसी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? परौंठे ठंडे हो रहे हैं तो तुसी गर्म, कोई दलील तो ना होई?

0: बड़ी देर हो गई है, आया नहीं अजय तुहाड़े मिस्टर सुमीत।
1: तुसी चाह पानी का इंतजाम करो, वो आने वाला है। उस समय का खास पाबंद है, इसलिए तो इन्नी तरक्की की है उसने। कल टोरंटो ते आज मास्को, आज टोक्यो ते भलके फ्रांसिस्को। ओदे वर्गा बिजनेस एग्जीक्यूटिव लभ्या नहीं लभदा।
0: इहदा विआह होया है?
1: मेरा ख्याल है अजे नहीं। हाँ, अज ही ना कोई मेम शेम ले आवे। कॉलेज विच तक कुड़ियां दी लंबी लाइन सी इसते पिछे।
0: फिर तो वाह वाह फास्ट जा होएगा।
1: नहीं, वो तो सगो बड़ा कंपोज्ड शख्सियत दा मालिक है। सिर्फ दो ही टिकाने सन उसते, लाइब्रेरी ते कंटीन। हाँ सच, तेरी चाह दा वधिया साथी रहेगा।
0: मेरी चाह? अच्छा ना बाबा ना, मैं नहीं किसी नाल चाह पीती। उस गड्डी वाले नाल चाह पीती सी ते तुहानू शक हो गया।
1: सॉरी वीना, गुस्सा ना कर। आखिर मैं आदर्श पति हाँ, आदर्श इंसान तो नहीं जो शक भी ना करा। पर सुमीत तो सचमुच बहुत ग्रेट है। किताबां पढ़नियाँ ते जां फिर चाह पीनी। लाइब्रेरी विच वो किसी कुड़ी नू दुआले नहीं सी फटकन दिंदा, ते कंटीन विच कान बन जांदा। वो एक पेट फिकरा हुंदा सी, आई मीन बिजनेस।
0: इहो जे बंदे बड़े खुश्क सुभाअ दे हुंदे आ।
1: पर सुमीत दी तां खासियत ही हो रहे हैं कि वो नाल बह के कोई भी बोर नहीं होंदा। वो अपना काम भी करी जाता है ते तुहानू भी खुश रखता है। मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का सब तो भरपूर इंसान एहो ही है।
0: मैं नहीं मानती, तुहाडा अजे तक मैं इहो जिहा कोई दोस्त नहीं वेख्या। ओह सुमेश भाई साहब ने इत्थे आके बैठे रहणगे ते बेचारी वोटी घर कल्पदी रहेगी। दुआ जी घर नाल ही चंबड़े रहिंदे ने ते जनानी सारा दिन सौदा वगैरह करदी रहिंदी है।
1: नहीं बिना तेरी ऑब्जर्वेशन विच काली है।
0: हो सकदा है, पर तुसी भी अपने दोस्तां दी लोड़ तो ज़्यादा प्रशंसा करदे हो। हुण सुमीत दे इउं गुण गा रहे हो जिवें ओह बंदा नहीं सगों देवता होवे।
1: खैर, सुमीत सेपरेट चाह दा शौकीन है, ख्याल रखी।
0: आउण वाला आए तां सही, तुसी तां पहले खाम खा फिक्रमंद हो गए हो।
1: मैं शर्त लाउना कि तेरा मिस्टर आदर्श भुल जाएगा।
0: शर्त ना लाओ हार जाओगे। जो सी वो ओहो सी,
1: रही शर्त,
0: रही शर्त।
1: वो आ गया पूरे 2 बजे।
2: हेलो कुमार,
1: हेलो सुमित, वेरी गुड। मैनू खुशी है कि तू अपनी सेहत नु बड़ा संभाल के रखा होया।
2: पर तेरी ये गोगड़ बहुत बुरी है।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हो सच में भूल ही गया, ये मेरी वाइफ है वीना। ते वीना, सुमित बारे तो तू जानती है।
2: भाभी जी मेरे बारे किवें जानते ने? मेरा ख्याल है मैं पहले तो कदे भी इन्हों नहीं मिलया।
0: मैं पानी लेके आई।
2: भाभी जी पानी नहीं चाह। दूध पत्ती तेज, मिठे पानी का परहेज।
0: अच्छा पहला पानी ते फिर चाह।
2: मंजूर है।
1: लो जी, साडा पता तक कटिया गया। ये भी चाह दे शौकीन ते तू भी कंटीन दा कान। याद है?
2: वो तो ठीक है, पर तू हजे पप्पू ही है।
0: एलो पानी।
2: थैंक यू। माफ करना भाभी जान, तुहाडे पति देव नू कॉलेज दीयां लड़कियां पप्पू कहंदियां हुंदियां सी। फाइनल डे उत्ते तां इक कुड़ी ने इहनू स्टेज उत्ते निप्पल वाली बोतल भी प्रेजेंट कर दित्ती सी।
3: पहला हसो, रज के हसो। हड्डा साहब कहंदे हुंदे सन, कम करदिआं रोना नहीं चाहीदा, रोण लग्गिआ किसे वल वेखना नहीं चाहीदा, वेखण लग्गिआ हसना नहीं चाहीदा, ते हसन लग्या बोलना नहीं चाहिदा। तुसी होर
2: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
1: हाँ सुमित, ये साढ़े चाचा जी ने, चाचा दलील सिंह।
2: तुसी बैठो चाचा जी।
3: नहीं मैं शीशा फिट करना है, पर पहला चाह बनावांगा।
0: चाचा मैं पानी तर दिता है, बना लवांगी।
3: नहीं बेटा, तुसी बर्तन ला लियो, मैं बना लवांगा।
2: सुमित, भाभी तो चंगी है।
1: हाँ भरा, पर तू मेहरबानी रखी, कॉलेज वाली आदत छोड़ दे।
2: हैं? ये तो तेरा वहम है पप्पू।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लोहन सुनो हिंदी कवि गोष्ठी, भाग लैण वाले कवि ने प्रेम विज, सागर सूद, संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोश।
1: चलिए आज फिर कविता की बात करते हैं। कविता जो आकाश से उतरती है उड़न खटोले पर बैठकर, कविता पर्वत से भी उतरती है, कविता नदी की लहरों के साथ साथ चलती है। कविता साहित्य की वो विधा है जो सुकून देती है, तपते हुए हृदय को भी शीतलता प्रदान करती है। तो चलिए आकाशवाणी जलंधर की ओर से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हम ऐसी ही भावनाएं लेकर हमारे साथ जुड़ बैठे कुछ कवियों को शुमार करते हैं। उनकी कविताओं का आनंद मानेंगे हम, उनकी गज़लों का आनंद मानेंगे हम। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व थोड़ा थोड़ा परिचय कवि साहिबान का देना चाहूँगा। आज की इस कवि गोष्ठी में मेरे साथ हैं श्री प्रेम विज जी। प्रेम विज कविता कहते हैं, कहानी भी लिखते हैं, साहित्यकार हैं, चिरकाल से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। श्री सागर सूद संजय,
2: नमस्कार।
1: छोटी सी उम्र में जितनी उपलब्धियां सागर सूद संजय ने हासिल की हैं वो मुकाम बहुत बहुत ऊंचा है, पर्वत से भी ऊंचा है, सागर से गहरा है। जैसे इनका नाम ही सागर है, इनकी उपलब्धियां भी सागर से गहरी हैं। श्री वीरेंद्र अदब ये जलंधर से हैं, कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता कहते हैं। स्वागत है इनका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। और इनके साथ मैं नाचीज सिमर सदोश, मैं भी कविता भी लिख लेता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ और व्यवसाय के रूप में मैं पत्रकार हूँ। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले प्रेम विज से हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो ही कोई कविता अच्छी सी जो सुकून प्रदान करे हमें भी और हमारे श्रोताओं को, वो कविता प्रस्तुत करें। श्री प्रेम विज।
3: धन्यवाद सिमर जी, बहुत अच्छा परिचय दिया
1: जी। जी
3: पेश है कविता। घरों दे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है।
2: क्या बात
3: है। घरों दे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है।
2: क्या बात है, वीसा बहुत अच्छे।
3: घरों दे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है। शुक्रिया दोस्तों। गगन की नील लहरों में उगे जे द्वीप तारों के, गगन की नील लहरों में उगे जे द्वीप तारों के, कभी जलते कभी बुझते, कभी जलते कभी बुझते नैन उजले मीनारों के।
2: क्या बात है, वाह वाह।
3: कभी जलते कभी बुझते नैन उजले मीनारों के, ना जाने कौन जगती रोशनी को यूं बुझाता है। ना जाने कौन जगती रोशनी को यूं बुझाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गीला बहुत कोमल कवारी चांदनी का तन।
2: कवारी चांदनी का तन।
3: बहुत गीला बहुत कोमल कवारी चांदनी का तन है ऐसे।

0: दूध में जो वन
1: क्या बात
0: आ,
1: है,
0: दूध में
1: क्या
0: जो
1: तसव्वुर
0: थैंक यू
1: है ये।
0: थैंक यू, है ऐसे लग रहा जैसे नहाया दूध में जो
1: जोवन
0: वन,
1: जोवन वाह।
0: शहर उठती है परछाई, शहर उठती है परछाई, बदन चेहरा छिपाता है सुलगती धूप के नीचे, कोई सपने जलाता है।
1: आहा वाह
0: वाह जी वाह।
1: वाह,
0: इन पंक्तियों पे गौर चाहूंगा।
1: जी भी साहब जी।
0: जो सूरज रोज आता है,
1: हाँ, जो सूरज रोज आता।
0: जो सूरज रोज आता है, जो तारे रोज आते हैं।
1: वाह जी।
0: जो सूरज रोज आता है,
1: जो
0: जो
1: तारे
0: तारे रोज
1: रोज आते
0: आते
1: हैं।
0: हैं, बिना तेरे घरों दे चांदनी के टूट जाते
1: आहा
0: हैं।
1: वाह जी, रोंदे चांदनी के
0: बिना
1: टूट।
0: तेरे घरों दे चांदनी के टूट जाते हैं, मेरा मन चांदनी की मौत पे आंसू बहाता
1: ओ,
0: है।
1: चांदनी की मौत पे।
0: मेरा मन चांदनी की मौत पे आंसू बहाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है, घरों दे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है, घरों दे चांदनी के।
1: क्या बात है
0: वाह
1: भाई
0: जी
1: साहब,
0: वाह,
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छे भाई
0: बहुत
1: साहब।
0: खूबसूरत। धन्यवाद।
1: कभी जलते कभी बुझते थी। तो ये थे प्रेमबीर जी। अब मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन सागर साहब कविता तलफ़ुज़ में भी, गज़ल तलफ़ुज़ में भी कहते हैं और तरन्नम में भी, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, करूँगा उनसे कि कृपया अगर वो हमें तरन्नम में कोई गजल सुनाए तो
0: बहुत
1: माशाल्लाह बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया
1: स्वागत
0: सदोष भाई।
1: जनाब
0: सागर जी स्वागत
1: सागर
0: स्वागत
1: सूद संजय जी।
2: शेर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों को नमस्कार। चार मिसरे
1: जी
2: सबसे पहले
1: जी स्वागत है। अरशाद
2: खुद को ही समर्पित कर रहा हूँ, जो दिल कर रहा है आजकल
1: अरशाद
2: कि
1: अरशाद।
2: बहुत दिल भर चुका है, खूब रोना चाहता हूँ। बहुत दिल भर चुका है, खूब रोना चाहता हूँ, मैं माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ।
1: अरे
2: और जिसे
1: बहुत।
2: दौलत या शोहरत से नहीं मतलब कोई भी, वही मासूम बच्चा फिर से होना चाहता
0: अरे
2: हूँ।
0: सुबह
2: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
2: शुक्रिया।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया,
1: बहुत खूब
2: आ
1: समझे
2: अपने
1: साहब
2: अंदाज से कुछ अलग रंग
0: जी।
2: चार मिसरे याद देखिएगा कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया,
0: उसकी गलियों में जाना
2: उसकी
0: छोड़।
2: गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया।
0: वाह
2: वाह जी
0: वाह
2: वाह।
0: वाह, खूब
2: उसकी गलियों में जाना छोड़
0: छोड़
2: दिया, अपने
1: दिया।
2: दिल को दुखाना छोड़ दिया, और वो भी मेरा नहीं हुआ सागर, जिसकी खातिर जमाना छोड़
0: ओहो हो, सागर जी
2: दिया।
0: बहुत खूब,
2: कि
0: बहुत ही खूब जी, बहुत
2: वो भी
0: सुंदर,
2: बहुत
0: वाह
2: बहुत
0: वाह
2: शुक्रिया
0: वाह
2: सागर,
0: बढ़िया,
2: वो भी
0: बहुत
2: मेरा नहीं हुआ
1: वाह
2: सागर,
1: सागर,
2: जिसकी
1: वाह
2: खातिर जमाना छोड़ दिया।
0: वाह
2: और सदोष भाई,
0: वाह
2: गजल आपका हुक्म तरन्नुम में कहने का प्रयास कर रहा हूं।
0: वाह, स्वागत स्वागत।
2: मतला देखिएगा।
1: अरशाद अरशाद।
2: दिल किसी पर निसार मत करना, दिल किसी पर निसार मत करना, यार भूले से प्यार मत
0: वाह वाह,
2: करना। शुक्रिया।
0: भूले से
2: बहुत
0: मत
2: खूब। यार
0: करना,
2: भूले से प्यार मत करना। और शेर देखिएगा।
1: अरशाद।
2: लोग संग दिल हैं, जख्म देते
0: क्या
2: हैं,
0: बात है,
2: इन पे तू ऐतबार मत
0: वाह
2: करना।
0: वाह सुंदर, वाह
2: शुक्रिया
0: सुंदर
2: जी।
0: सागर
2: इन पे
0: जी,
2: तू ऐतबार मत
0: बहुत
2: करना,
0: बढ़िया, बहुत खूब।
2: मांग लेना मैं जान दे दूंगा,
1: वाह वाह,
2: मांग
1: मांग लेना।
2: लेना मैं जान दे दूंगा, पीठ पीछे से वार मत करना।
0: वाह
2: बहुत बहुत
0: खूब,
2: शुक्रिया।
0: बहुत खूब,
2: मांग
0: बहुत खूब,
2: लेना मैं जान दे दूंगा, पीठ पीछे से वार मत
1: करना।
2: करना। और शेर देखिएगा। सर पे बोझा है जिम्मेदारी का,
1: वाह,
2: सर पे बोझा है
1: जिम्मेदारी
2: जिम्मेदारी का।
1: का।

0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मेरा इंतजार मत करना। और मक्ता समर्पित कर रहा हूँ,
1: अरे स्वागत
0: दिल किसी का दुखा के ऐ सागर।
2: आहा, वाह वाह वाह, फिर से
1: बहुत सुंदर,
2: कमाल है।
0: दिल की

0: करे ना,
1: बहुत अच्छे।
0: दिल किसी पर निसार मत करना, यार भूले से प्यार मत करे ना। बहुत बहुत
1: वाह जी
0: शुक्रिया,
1: वाह, बहुत
0: कमाल
1: खूब।
0: है। दिल किसी पर निसार मत करना, यार किसी से प्यार मत करना, कमाल है। सागर सूद साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो ये थे श्री सागर सूद संजय जी, जिनका कलाम इतना खूबसूरत और इतना सुंदर, क्या बात है। मेरी ओर से दाद भी, मेरी
1: बहुत
0: ओर
1: बहुत
0: से
1: शुक्रिया,
0: स्वागत भी।
1: शुक्रिया संतोष भाई।
0: तो अब मैं दावत देने जा रहा हूँ श्री वीरेंद्र अदब जी, ये कविता कहेंगे। कविता से सुकून मिलता है, जैसे मैंने पहले कहा, वीरेंद्र अदब जी जलंधर से हैं। स्वागत है जी वीरेंद्र अदब जी इस कवि गोष्ठी में। आप आइए और कविता सुनाइए।
1: मेरी रचना है, बंदे तेरी हस्ती है क्या?
2: तेरी
1: तू
2: हस्ती,
1: कौन है? तेरी हस्ती है क्या? कुछ भी नहीं है, जो कहलाए थे सिकंदर, खबर उनकी नहीं है। तू कौन है? तेरी हस्ती है क्या?
0: तेरी हस्ती है
1: कुछ भी
0: क्या?
1: नहीं है।
0: वाह वाह वरिंदर जी, वाह।
2: बहुत
1: कुछ न होते भी छलक जाती है जामे हस्ती ये, कुछ न होते भी छलक जाती है जामे हस्ती ये। सच यही है, दूर है, बड़ी दूर मुकामे हस्ती ये। जिंदगी में जो किए सब सामने मेरे काम है, मेरे ही आगाज का मेरे सामने अंजाम है। आज खुद मैं खुद से ही जब मिलके शर्माने लगा,
2: जी
1: कुछ नहीं हस्ती मेरी मुझको
0: वाह
1: समझ आने लगा।
2: वाह
0: वाह
2: जी वाह,
1: वाह
2: बहुत
1: जी वाह।
2: सुंदर, बहुत बढ़िया।
1: मैं कभी किसी चश्मे तर का अलमदद न बन सका, मैं कभी किसी चश्मे तर का अलमदद न बन सका। बना रहा सदा मैं सितमगर, चारागर न बन सका।
0: वाह,
1: वाह। छूना चाहूँ आसमां, छूना चाहूँ आसमां, इतनी मुझ पर रहमत कहाँ। करम बिन नहीं मिलती शोहरत, अमा ये बिन किस्मत कहाँ। अब जो मेरे चार सू अंधेरा सा है छाने लगा,
0: जी
1: कुछ
0: वाह
1: नहीं हस्ती मेरी
0: वाह
1: मुझको समझ आने लगा।
0: वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: सुंदर,
0: वाह, बहुत बढ़िया।
1: ख्वाहिश थी मेरी बनकर चांद करूँ रोशन
0: बन के
1: जहाँ,
0: चांद थी मेरी,
1: ख्वाहिश थी मेरी
2: बन
1: बनकर चांद करूँ रोशन जहाँ।
0: के।
1: गिले हजी को दूर सकूँ, बिन रजा तेरी मुमकिन कहाँ। टूट जाता है बशर जब जिंदगी की राहों में,
2: टूट
1: कह रही
2: जाता
1: है अजल अब आ जा तू मेरी बाहों
0: वाह
1: में।
0: वाह जी वाह वाह वाह वाह,
1: ख्वाबों
0: बहुत
1: का गुलशन, ख्वाबों का गुलशन मेरे सम्मुख जो जल जाने लगा,
2: खूब।
1: कुछ नहीं हस्ती मेरी
2: वाह जी
1: मुझको
2: वाह,
1: समझ आने लगा।
2: मुझे समझ
1: वाह
2: आने लगा।
1: प्रभु की बंदगी बिना ये जिंदगी इल्जाम है,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: जी
0: वाह
1: वाह।
2: वाह,
1: प्रभु की
2: जय
1: बंदगी
0: जय
1: बिना
2: वीरो, जय
1: ये जिंदगी इल्जाम है, मुफलसों की सेवा ही प्रभु बंदगी का नाम है।
0: क्या बात है।
1: गम में भी हंसकर जिया, ऐसी तबीयत है मेरी। कर्म से मिलता है सब, यही नसीहत है मेरी। कर्मों का है फल अदब, जो है मुझको रुलाने लगा।
0: क्या बात है,
1: कुछ
0: वाह
1: नहीं
0: वाह
1: हस्ती मेरी
0: वाह वाह
1: मुझको
0: वाह
1: समझ
0: वाह,
1: आने लगा।
0: बहुत
1: कुछ
0: बहुत
1: नहीं
0: बहुत,
1: हस्ती मेरी
2: मुझको
1: मुझको समझ
2: समझ
1: आने
0: आने
1: लगा।
0: लगा, बहुत
1: बहुत अच्छे
0: बढ़िया।
1: वीरेंद्र जी,
0: प्रभु
1: बहुत
0: की
1: अच्छे।
0: बंदगी बिना ये जिंदगी इल्जाम है, तो ये नज़म, ये रचना प्रस्तुत कर रहे थे श्री वीरेंद्र अदब जी।
1: क्या बात है वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे। और इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ उस इंसान को जो वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जलंधर से हैं, श्री सिमर सदोश साहब। मुझे चार मिसरे याद आ जाते हैं उनको देखकर कि मोहब्बत
0: अरे
1: की
0: वाह,
1: रिवायत को यूँ हम दोनों निभाएंगे।
0: अच्छा
1: कभी तुम
0: वाह।
1: याद

0: राजाना कभी हम याद आएंगे और खफा होने नहीं देंगे कभी एक दूसरे को हम, कभी तुम मुस्कुरा देना कभी हम मुस्कुराएंगे। तो जिनके चरणों में बैठने के लिए हम भी व्याकुल रहते हैं, तो आइए सुनते हैं उनको। सिमर सदोष साहब,
1: मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ सागर साहब। तो संजय जी, मैं इजाज़त चाहूँगा आप सभी से।
0: स्वागत है।
1: हम मानवता के रक्षक और शांति के पुजारी, सिख पंथ की पहली पातशाही बाबा गुरु नानक देव जी का पर्व मना रहे हैं। एक आध दिन में है
0: जी।
1: तो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चार चंद पंक्तियाँ बाबा गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ अपनी अकीदत के शब्द। धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, जिसको आप संवारा हो गुरु नानक। धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, जिसको आप संवारा हो गुरु नानक। जिहवा उसकी आप ही शुद्ध हो जाए, जिहवा उसकी आप ही शुद्ध हो जाए, मुख से जिसने उचारा हो गुरु नानक। तो पंक्तियां सुनिएगा जी। जिसने कल को पार उतार डाला,
0: जिसने कल को पार उतार डाला,
1: सच्चा सुच्चा वो पीर है गुरु नानक। मीर मीरों का कहता है जग सारा, ऐसा उच्च का पीर है।

0: पार
1: पार उतार डाला, सच्चा सुच्चा वो पीर है गुरु नानक, मीर मीरों का कहता है जग सारा, ऐसा उच्च का पीर है गुरु नानक, ऐसा उच्च का पीर है गुरु नानक। तो मैं एक गजल
2: जी स्वागत
1: प्रस्तुत करना चाहूंगा।
3: अरे स्वागत स्वागत
1: सागर साहब
2: जी
1: की गजल आपने कोयल की मीठी आवाज में सुनी, तो आप तलफज पे भी मेरी कविता मेरी गजल सुनिएगा। गजल से पहले चंद पंक्तियां एक कथा मैं पेश करना चाहूंगा।
3: स्वागत।
1: कहो तो बाल पर लिख दो। सागर सूद
2: जी जी स्वागत।
1: कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं।
2: क्या बात है, वाह वाह।
1: कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं। कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, कहो फूलों की पत्ती पर, कहो तो शूल पर लिख दूं।
3: वाह वाह।
1: कहो फूलों की पति पर, कहो तो शूल पर लिख दूं, तुम्हारा नाम प्यारा है महज इस ख्याल से लिख
2: दूं,
1: तुम्हारा नाम प्यारा है। कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, कहो तो मान सर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, तुम्हारा नाम प्यारा है महज इस ख्याल से लिख दूं।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: तो एक और मुक्तक
2: जी
1: मैं पेश करना चाहता
2: हूँ। स्वागत है
1: सागर साहब। ये आपकी नजर
2: स्वागत
1: आपकी गजल को सुनकर मुझे ये कथा याद आया है।
2: ज़हीर नसीब।
1: कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए।
3: कुछ इस तरह से
1: वक्त के तेवर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान यकसर बदल गए। कल तक थे मेरे मेहरबान यकसर बदल गए।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: सोचो चाहूंगा
2: जी जी जी।
1: वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, अफसोस उस गली से वो घर बदल गए। अफसोस उस गली से वो घर बदल गए। एक और कथा फिर मैं छोटी सी छोटी गजल है, इसलिए कथा
2: जी जी स्वागत स्वागत है।
1: वफा की डगर पर जरा दूर चल गए। वफा की डगर पर जरा दूर चल चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के।
2: पहलू
1: वफा की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं
2: पहलू
1: बदल के, वो कर देंगे अफशां ये राजे मोहब्बत। मत करो, वो कर देंगे अफशां ये राजे मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे आंसू पिघल कर। कर देंगे अफशां ये राजे मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे आंसू पिघल कर। तो ये गजल पेशे खिदमत है, छोटी बहर की गजल है
2: जी जी जी।
1: जिसको दर्द का पास नहीं है, जिसको दर्द का प्रेमी।
2: हाँ जी हाँ
3: जी हाँ जी।
1: ये शेर आपकी नजर।
3: शुक्रिया शुक्रिया।
1: जिसको दर्द का पास नहीं है उसका दर्द भी खास।
2: बहुत अच्छा।
3: दर्द
1: जिसको दर्द का पास नहीं है उसका दर्द भी खास नहीं है, मन बंजर तन खंजर उसका।
2: अच्छा क्या
3: बंजर।
1: मन बंजर तन खंजर उसका, उससे नेह की आस नहीं
2: है।
1: मन बंजर तन खंजर उसका, उससे नेह की आस नहीं है। शबनम को वो क्या समझेगा,
3: शबनम को
1: वो क्या समझेगा, लब पे जिसके प्यास
2: नहीं। क्या बात है, जवाब नहीं है।
3: बहुत को
1: वो क्या समझेगा,
2: वाह वाह वाह,
1: जिसके लब पे प्यास नहीं है, कैसे आ पाएगा परिंदा।
2: कैसे
1: आ पाएगा परिंदा जंगल में रुख घास।
2: वाह वाह वाह, क्या
1: कैसे आ पाएगा।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: जंगल में

0: खास, खास नहीं है।
1: फाका कशी मुकद्दर जिसका, फाका कशी मुकद्दर जिसका उसके मन उल्लास,
2: बहुत बढ़िया,
1: जिसका उसके मन उल्लास नहीं है। बिन मकसद क्या हासिल सफरी, बिन मकसद क्या हासिल सफरी, ये मजमा कुछ खास नहीं है।
2: क्या बात है, वाह वाह,
1: बिन मकसद क्या हासिल सफरी, ये मजमा कुछ खास नहीं है। तो मक्ता पेश कर रहा हूँ जी,
0: स्वागत
1: है। आओ ढूंढे वो बाशिंदा, आओ ढूंढे वो बाशिंदा जिसका हिया उदास, आओ ढूंढे वो बाशिंदा
2: जिसका हिया
1: उदास,
2: वाह वाह वाह सिमर जी, बहुत
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: उसका दुख भी खास
2: ने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया,
2: बहुत बढ़िया।
1: तो साहिबो, मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा समय आकाशवाणी वालों ने हमें और दे दिया है, तो क्यों ना हम कविता का छोटी छोटी कविता, छोटी सी गजल, कुछ शेर, तो एक दूसरा दौर चला लें। तो दूसरे दौर में मैं प्रेम बीत जी को फिर गुजारिश करूँगा कि वो कोई छोटी सी कविता नज़म।
3: शुक्रिया सिमर जी, छोटी सी कविता।
2: स्वागत भी साहब।
3: सांप दुविधा में है, सांप
2: दुविधा
3: में
2: है,
3: आदमी इन दिनों सांप से अधिक बेशाला हो गया है।
2: वाह वाह,
3: आदमी इन दिनों सांप से अधिक बेशाला हो गया है, इसलिए खबर है कि सांप आदमी से डरने लगा, इसलिए खबर है कि सांप आदमी से डरने लगा है। सांप दुविधा में है, सांप दुविधा में है, कहाँ रहे बांबियों में तो अब आदमी रहने लगा। सांप दुविधा में है, कहाँ रहे बांबियों में तो अब आदमी रहने लगा है। सांप भयभीत है आदमी से, सांप भयभीत है आदमी से, कब डस ले कब उसे पालतू बना नाचनी चाहे। सांप भयभीत है आदमी से, कब डांस ले उसे पालतू बना नाच निचाए, और जब जी भर जाए तो उसकी खाल की तिजारत करे। सांप दुविधा में है कि अब भी उससे भी ज्यादा विशाला हो गया है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सागर संजय जी से कि वो अपनी कोई नज़म या गजल पेश करें।
4: इजाज़त हो तो दो चार रुबाइयाँ ही कह देता हूँ समय की नज़ाकत को देखते हुए। कि तू जो मुझसे खफा नहीं होता, तू जो मुझसे खफा
1: नहीं
4: होता,
1: होता
4: पास मेरे भी क्या नहीं होता। कि तू जो मुझसे खफा नहीं होता पास मेरे भी क्या नहीं होता, और एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। कि काश तू बेवफा नहीं होता। और चार मिसरे देखिए, कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, कि कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, बस वफाओं के बदले वफा चाहिए। कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, बस वफाओं के बदले वफा चाहिए, और मिल गए हो मुझे तुम सदा के लिए, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो अब मैं गुजारिश करूँगा श्री वीरेंद्र अदब जी से, वो भी इतनी ही छोटी सी
0: रचना है। नशा,
1: नशा, वाह वाह।
0: नशा नहीं ये मौत है युवको, नशा नहीं ये मौत है युवको, नशा ये तुम्हें मिटा देगा, तुम्हारे चाहने वालों को ये खून के अश्क पिला देगा। नशा नहीं ये मौत है युवको, क्यों तुम अपने दुश्मन बनकर अपना ही घर लूट रहे। जीवन ये अनमोल है प्यारो, जीवन ये अनमोल है प्यारो, क्यों तुम खुद से रूठ रहे। वक्त अभी बाकी है, नशा ये मौत की नींद सुला देगा।
2: वाँ वाँ वाँ
0: नशा वाँ नहीं ये मौत।
4: बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी,
0: और बता देगा।
4: आज के इस अंतिम दौर की तरफ चलते हैं, और मैं सिमर संतोष जी के विनती करता हूँ कि वो चंद लाइनें आपको समर्पित करेंगे।
1: चलिए एक दो पंक्तियाँ, पहले गजल के दो शेर कहने

0: से पहले
1: जी स्वागत है।
0: तीन पंक्तियां हैं। हक बेहका खा सकता है,
1: हक
0: बेहका खा सकता है, जुल्म कोई भी ढा सकता है। हक बेहका खा सकता है, जुल्म कोई भी ढा सकता है। धूप किसी की खा जाने को,
1: धूप किसी की,
0: धूप किसी की
1: खा जाने को,
0: खा जाने को बादल बनकर छा सकता है। अदब से ना वाकिफ ये फिर भी, अदब से ना वाकिफ ये फिर भी हर महफिल में छा सकता
1: है। बहुत अच्छे।
0: तो इस गजल के दो शेर
1: जी जी
0: पेशे खिदमत है। जीना हो तो मुस्कुराना सीखिए,
1: वाह
2: वाह।
0: जीना हो
2: मुस्कुराना
0: तो मुस्कुराना सीखिए, आंख के आंसू छिपाना सीखिए।
1: अच्छे।
0: जीना हो तो मुस्कुराना सीखिए, आंख के आंसू छिपाना सीखिए। शेर सुनिए
1: जी। स्वागत।
2: बहुत बढ़िया।
0: उनसे भी जो आपके बदखाह हों,
2: उनसे भी
0: जो आपके बदखाह हों, कोई वायदा निभाना
1: सीखिए।
0: उनसे भी जो आपके बदखाह हों, कोई वादा निभाना सीखिए। अरे गैर से पर्दा किया तो क्या किया, गैर से
1: पर्दा किया,
0: पर्दा किया तो क्या किया, खुद से ही खुद को छिपाना सीखिए।
1: बहुत अच्छे जी।
0: खुद को ही खुद से छिपाना सीखिए। आंधियों के साथ चलिए बारहा,
2: आंधियों के साथ,
0: आंधियों के साथ चलिए बारहा, मौसमों से घर सजाना
1: सीखिए।
0: मौसमों से घर सजाना सीखिए। शहर में होगा चरागाह इसलिए, शहर में होगा चरागाह इसलिए, दीप दीपक से जलाना
1: सीखिए।
0: तो शुक्रिया जी। मैं आज यहाँ हमारे साथ उपस्थित हुए कवियों, शायरों, प्रेमवीर जी का, अदब जी का, और सागर सूद संजय जी का आकाशवाणी की ओर से और अपनी ओर से हृदय से आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने भी इन इन शायर साहबान का, कवियों का, की शायरी का, कविताओं का आनंद लिया होगा। धन्यवाद। शुक्रिया।
3: हुणे तुसी हिंदी कवि गोष्ठी सुन रहे सी। पागलन वाले कवि सन प्रेम विज, सागर सूद संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोष। आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। लो हुण चंद गजलां समात फरमाओ। सब तो पहला चंदन दास की आवाज़ च एक गज़ल।

0: ते रात 11:05 सुनोगे अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा।

0: हेलो,
1: सत्रीकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी।
1: मैं बंसी लाल, पिंड केचा मोड़ी, जिला अम्बाला जी।
0: क्या बात है जी। ते केहो जा मौसम रहा जी अम्बाला च?
1: अज मौसम तो अली साडा कसर रह गई सी,
0: अच्छा जी,
1: बारिश नहीं पई। अज
0: पड़ास पै गई फिर?
1: ना पड़ी नहीं जी,
0: चलो जी, ते फरमाइश दस दियो जी, मीह पिया या नहीं
1: बंदू
0: पिया?
1: माला चढ़ा मर्जी ला दो भाई।
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, आकाशवाणी रेडियो जलंधर स्वागत प्रोग्राम जी।
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: हाँ जी सर जी, प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल जी, प्रवान करो जी मट्टू खानी मौड़ जी।
0: सत श्री अकाल जी मट्टू जी, होर सुनाओ की करदे हो जी।
1: ठीक है जी, थोड़े प्रोग्राम सुनी गल जी, क्या बात है, क्यों दिन मारते हो जी, मामा नाम सर जी करते हैं जी।
0: ते सारे दोस्त सुनणगे तुहाडी फरमाइश दा गीत, ते दस दिओ जी फरमाइश अपनी।
1: फरमायश जी, सर जी कलंगा दे बादशाह श्री कुलदीप मानक साहब का जी, एक अद्धा कबूल सुना ला जी मैं, जे थोड़ा हुक्म होवे।
0: जरूर जी, बोलो जी।
1: हाँ जी। भौतियां पर दसना दी और रब्बा खुनेगा करो अरजोई, दाज दिया सोबिया नू, जे की सुना सर जी।
0: जरूर जी, फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: बाबा नानक चढ़दी कलश रखे, सत श्री अकाल जी,
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।

0: हाँ जी, स्वागत है जी
1: हेलो सर
0: प्रोग्राम
1: जी,
0: च।
1: सत
0: स्वागत है
1: श्रीकाल
0: जी।
1: सत श्रीकाल जी
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी,
1: जी तो मनी जी फाइल का
0: ते गीत केड़ा जी,
1: गीत मैं सोया ला दो सर जी, चन्न फिक्का फिक्का।
0: जरूर सुनाने हैं जी। फोन
1: हाँ जी,
0: करने लिए शुक्रिया जी।
1: ओके थैंक यू।
2: हाय किन्ना सोहना है मेरा माही, मेरे चौंदे सामने

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस्तो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीराम मलौर तो। हाँ
0: क्या बात है जी, तुहाडे सुनेहे भी आंदे आ।
1: जी,
0: ते गीत दी फरमाइश दस्तो जी।
1: जोगी रे जोगी तेरे इश्क ने किस तारो जी।
0: जोगी रे जोगी नहीं है जी, जोगी दा होर सुनाने। तुहानू गीत जरूर पसंद आएगा, मनप्रीत
1: ठीक
0: अख्तर
1: है
0: दा
1: ठीक
0: जोगी आ।
1: है।
0: तकनी गल
1: जिंदर
0: को
1: की है ठीक
0: नहीं जी, मनप्रीत अख्तर फीमेल
1: है।
0: सिंगर है।
1: धन्यवाद।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस्सो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: मैं छिंदर सिंह वारवल एंड मोरिंग जिला फाजिलका जी।
0: ते गीत दी फरमाइश सर,
1: बलकार सिद्ध सुना दो जी। कोई भी
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो अश्विनी शास्त्री।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी।
1: मैं बोलता
0: अपने बारे दसो, कौन ते कित्थों बोल रहे हो?
1: हरप्रीत बोल रहे फगवाड़े तो
0: नाम ना बदलिया करो, असली दस दियो। अच्छा
1: देसराज बोलता
0: जी, ते गीत दस दियो जी, केड़ा सुनना जी?
1: मिस पूजा दलाल।
0: पसंद?
1: हाँ जी
0: फोन करने शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।

ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ये फरमान पंचम गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों राग सूही विच उचारित है। साहिब फरमाउंदे ने कि हे मेरे मालिक प्रभु, मैं तेरिया बख्शिशां दी कदर नहीं सा जानदा। मैनू निमाणे प्राणी नू आत्मिक जीवन दी सूझ नहीं सी। मैं ब्रह्म विचार सिमरन ते नेक अमलां तो अणजाण सा। प्रभु तेरी मेहर नाल मैनू सब तो वड्डा ते विशाल गुरु नानक मिल गया, जिसने मेरी लाज रखी ते मैनू तेरे चरण कमलां नाल जोड़ दिता है। ये सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने संतां दी अपने प्यारियां दी आप पैज रखता है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक काओ पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: मेरे राम राये, तुम संता का संत तेरे, तेरे सेवक काओ पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। इस शब्द का गायन किया सिपाही बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़े प्राणी उस मालक दे प्रेम रंग विच रंगे रहिंदे ने, उन्हां दे जम्मण मरण दा गेड़ ते दुख समाप्त हो जांदा है, ते उस परमात्मा नाल अगम्मी मेल स्थापित हो जांदा है। पर इसलिए जरूरी है कि उस परवरदिगार दे चरणां च बेनती की जाए, जोदड़ी की जाए, ता ही परमात्मा तुट के किरपा करता है। सेवक सेवै करह अरदास, तू आपे मेल बहाल है पास। गुरबाणी फलसफे मुताबक गुरसिख ने हर दुख सुख विच अकाल पुरख दे सन्मुख एकागरचित हो के अरदास करनी है। सुनदे हां डॉक्टर जसवंत सिंह होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच अरदास दा संकल्प।
1: अरदास शब्द दीयां जड़ां फारसी अते संस्कृत भाषा विच पईयां होईयां हन, पर हुण इह शब्द अपनी विलक्षण अते सुतंत्र होंद बना चुका है। अरदास शब्द सुनदियां पढ़दियां साडा ध्यान सिख धर्म विच हर धार्मिक संस्कार वेले जां किसी कार्ज की शुरुआत अते संपूर्णता तो बाद कीती जाण वाली अरदास वल जांदा है। वख वख धर्मां विच अरदास लई प्रार्थना, प्रेयर, दुआ आदि शब्द वरते जाते हैं। पंजाबी विच ही इस दे समान अर्थी शब्द बेनती, जोदड़ी, बिनय, अरजोई आदि देखे जा सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अरदास लई अरदासे, बिनौ, बेनंतिया, बेनंती, बेनती शब्द वरते गए हैं। अरदास अपने तो उच्ची शक्ति अगे कीती जाती है, उस तो कुछ मंगन लई, भुलां बख्शाउण लई, मुक्ति प्राप्ति लई, जां आपो अपनी मनो अवस्था अनुसार गैबी शक्ति नाल वार्तालाप कीता जांदा है। अरदास असल विच हुंदी ही उदों है जदों आत्मा पूरी तरह जागृत हो जावे, क्योंकि इस तों पहलां अरदास हो ही नहीं सकती। धार्मिक समाज विच जो प्रचलित अरदास दा रूप है, उस विच ज़्यादातर तां परमात्मा तो केवल दुनियावी मंगां ही मंगियां जांदियां हन। परमात्मा दी प्राप्ति नाल उस दा कोई वास्ता नहीं हुंदा। अजोका मनुख दुनियावी चीज़ां विच लुप्त हो गया है, जिवें बच्चा खड़ौणियां तो अक के अपने आले दुआले माँ नूं लभदा है, इस तरह मन रूपी बच्चे नूं भी परमात्मा रूपी माँ चाहीदी है। जदों मनुख नूं इह सोझी आ जांदी है तां उह आप हुदरेपन नूं छड्ड के अपना आपा किसी वड्डी शक्ति दे सपुरद करदा है, उदों अरदास शुरू अते नाल दी नाल संपूर्ण हुंदी है। समर्पण तो बिना अरदास बारे सोचिया ही नहीं जा सकदा। पहलां जे असीं मन्नांगे कि परमात्मा है ते उह सर्व समर्थ है, फिर ही अरदास करांगे। जे मन इह गल मन ही नहीं रिहा तां अरदास किस अगे करांगे। सो अरदास दा पहला कदम विश्वास है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 ते श्री गुरु नानक देव जी दा फरमान है, जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा, एक नानक की अरदासी। अरदास करन वाला जीव बड़ा सिदकी होना चाहिदा है अते परमात्मा दी रजा नूं ही अपना जीवन लक्ष्य मन्ने। अरदास दी पूर्ति अपूर्ति उस दे लई इक्को जे होण। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ

कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरा आंगन। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

बल बंति छप कर तो पावा, पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी, शील धर्म दया सुच नासत, आयो शरण जी के दानी, कारण करन समरथ श्री।

रंचक रेत खेत तन रिमत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोते सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अरबंदप भोजन के सब सोज परी बर्दमान होवत नित प्रतनित आवत निकट बिखम जरे रे गुणहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर गले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परे रे मन मूस बिला मैं करबत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़े ओ सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतत आवत करत अगना मृत मंजार पसार मुख नरखत पुंचत पुगत पोख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात रिधे ना बिचारो, रथ ना सब न गस सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न बीर न मीर न खानम, संग न कहु दिष्ट निहारो, कोट न ओर न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो, ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर, रसक रसक ठाकर गुण गावत, इंदर मनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवर दानव, इक तिल ताको मरम ना पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जनता के दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल का सजावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे सम

खान पान मिठस भोजन अंत की बार पोत कत खारी नानक संत चरण समुद्रे पुर माया मगन चले सब डारी सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान।

0: पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दा सदा बलहारी।
1: आवत कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात बिदे मन दर्शन।

0: रस बासन सो जो धन दस्तायो, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलयन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को सो गुरुमुख देख गरु सुख पायो।
1: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रु पर, श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी रखिया ना जाई, सादिक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, तिन रहना थाप जोत जग तारी, रहने पंत धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया, तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, अप्यो हर नाम अखै निद चौह जुग, गुर सेवा कर फल रहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखन परनन

कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसम दी दूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे।

चरण कमल की ओट, उदरे सगल जान, सुन प्रताप गोविंद, निरपौ नाम धन, संत जना स्यों संग, पाई है।

श्लोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर राग जैत श्री दीवार दी 17वीं पौड़ी श्लोक।